کریم، اتنے کریم، اتنے کریم، ادھر سر جھکا ادھر راضی ہو گئے اللہ۔

ہر عشق کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: बैटरी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: 11.9%, 11.9%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99%।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
7: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
5: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: This program is brought to you by
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
10: एंड तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: 9 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: And
4: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रा पर जाएं.
1: And HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: दूसरों को इम्प्रेस करने करते हैं. सो ये हमें बताएं कि मतलब हम में से बहुत सारी चीजें हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग हमसे मुतासर हों. मतलब कभी कभी जिंदगी का मकसद ही यही होता है कि कुछ ऐसा अचीव करने के लोग बोले वाह क्या सीन है. और सो है तो इसलिए आप बताएं कि आपको क्या लगता है. और आपकी इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स होंगी, इतनी बड़ी गाड़ियों की कराची में जरूरत नहीं है. हम ये जो फोर व्हील ड्राइव लोगों ने रखी होती हैं, जैसे मेरे पड़ोसी हैं उनके पास 8 गाड़ियां हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि उनको 8 गाड़ियों की क्या जरूरत है. मतलब एवरी वीक की गाड़ी होगी ना, कि ये जो है ना हम एक दिन ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अलग अलग गाड़ियां लेके जाएंगे. मजा ले कभी हमें ऑफर की हो कि चलो तुम लोग हम आपको भी घुमा लेते हैं कभी आपको कभी गाड़ी की जरूरत हो. लेकिन नहीं, उन्होंने क्यों रखी 8 गाड़ियां, आई डोंट अंडरस्टैंड. किस लिए भजा? कि वो इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने ही जैसे वियर्ड लोगों को. मतलब उनका ताल्लुक सियासत से भी है, तो मैं कहती हूँ यार मतलब अपने ही कोई उन्हीं लोगों को इम्प्रेस करूंगे जो खैर. तो बहुत सारी चीजें हम इसलिए करते हैं तो लोग बोले कि यार वेरी गुड वेरी गुड. तो खैर आप बताएं, तो आप बताएं को आपको ऐसा लगता है, अगर कोई एग्जाम्पल है या आप भी ऐसा करते हो हमें बताएं. तो मतलब रोप डालने के लिए और इम्प्रेस करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, तो इसलिए आप हमें बताएं क्या कर आप भी ऐसा करते हैं और कौन सी चीजों से आप भी इम्प्रेस हो जाते हैं. तो हमें मैसेज करें. मैसेज करने का तरीका है कि आप अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें के एच आई स्पेस आपका मैसेज और आपका पैगाम और हमें बताएं. और उमेर अशरफ का मैसेज आया कि गुड मॉर्निंग सलाम टू यू एंड ऑल लिसनर्स. हेलो हाउस फातिमा, हाउ वाज योर टीचर्स डे. और वो कह रहे हैं यूजुअली फॉर इम्प्रेसिंग अदर्स पीपल यूजुअली लूज देयर ओन पर्सनालिटी वेरी कॉमन दीज डेज. बहुत कुछ कर रहे होते हैं, मुझे तो ये समझिए ना पहाड़ पे चढ़े होते हैं बहुत. फिर वो पहाड़ पे चढ़े, अच्छी बात है ठीक है ठीक है, माउंट एवरेस्ट के टू भाई वहां सर्दी है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां चढ़ जाओगे तो मतलब क्या हो जाएगा. लेकिन वो अपनी आपके पास इतनी एनर्जी है, आप या किसी की खिदमत कर लो, कुछ फिजिकली एक्टिव हो, कुछ घर वर बना लो, स्कूल बना लो. लेकिन नहीं, इतना वर्कआउट करके क्या करना होता है, हर चीज. इवन इफ अगर लड़के जिम जा रहे हैं या बॉडी बना रहे हैं, मेन पर्पस ये नहीं होता कि आप हेल्दी हो रहे हैं या फिजिकली एक्टिव हो रहे हैं या घर में जाके बीवी की मदद करेंगे या मासी को छुट्टी देके झाड़ू लगवाना शुरू कर देंगे. नहीं, वो जो बॉडी बन रही है वो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बन रही है कि मैं कितना फिट हूं और तुम कितने ओवरवेट हो. बहुत सारी चीजें हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं विच आर नॉट नेसेसरी और हम उसके बगैर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं. और लेकिन नहीं, हम नहीं ये बात समझते हैं बहुत सारे और इसकी एक लंबी लिस्ट है. खैर आप बताएं आपका इस अजीम शान टॉपिक पे क्या ख्याल है, हमें मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या एट आज समिया इंस्टाग्राम पे. पोस्ट मैं अभी डाल रही हूं, डू नॉट वरी अबाउट दैट. और अभी हमारा ये अंग्रेजी गाने का टाइम होता है. आई लव प्लेइंग, आई हैव टू प्ले सम लाइक नाइट सॉन्ग क्योंकि फिर वो मतलब बंदे की एनर्जी जो है ना वो थोड़ी अच्छी होती है. और मैं एक्चुअली अपनी एनर्जी के लिए कर रही होती हूँ बिकॉज आई नीड टू डांस इन द मॉर्निंग या आई हैव टू समटाइम्स. इट्स वेरी वेरी वेरी वेरी सुपर इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक. मैं जो ढूंढ रही हूँ मुझे मिल जाए ना अगर टाइम पे तो यही कोई बात होगी. लेकिन मजाल है कि जो मैं गाना लगाना चाह रही हूँ तो मुझे उसी वक्त मिल जाए, बड़ी मुश्किल हो जाता है ऐसा. फिलहाल हम ये सुनते हैं.
1: ओके एंड अगेन ओवर हियर प्लीज, 1 2 3.

0: FM 100 traffic update.
1: ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फारूक इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक हबीब बैंक चौरंगी से वो ट्रैफिक जो इस वक्त मारीपुर रोड की जानिब जा रहा है उसके दरमियानी रास्ते पर ट्रैफिक का दबाव है और गाड़ियां स्लो मूव कर रही है। इसके साथ साथ जौहर मोड़ से वो ट्रैफिक जो जौहर चौरंगी से जौहर मोड़ और वहां से डिग रोड सारा फैसल की जानिब आ रहा है उस पर भी कुछ ट्रैफिक का दबाव है, लिहाजा अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100।

0: एतबार नो पानी नो परेशानी।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
4: This program is brought to you by
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो, अप्लाई करो ऑनलाइन
4: एंड
6: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. 11.9% 11.9%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.9% 100 FM।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: 100 FM।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: Bank.
1: Pakistan ka best bank. Nizan Bank, the premier Islamic bank.
2: Pakistan humse hai. Hum acche to Pakistan acha. To aao ehd karein ki jaisa Pakistan hum dekhna chahte hain, वैसे खुद बनकर दिखाएंगे क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान अज़्मे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
5: FM 247 365.
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए.
6: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
9: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
6: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं.
8: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
9: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
8: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
9: और इस वजन की असल हकीकत को समझे.
6: आइए वेट से आगे का सोचें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: 11.9% 11.9%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.9% 100 FM
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: 100 FM।
6: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
9: This program is brought to you by
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
10: And दबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
0: And HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: This program is brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
0: एंड
2: टबाल फैमिली मिक्सचर लाइन उमराह पर जाएं
3: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और अभी आप गाना सुन रहे थे पहला प्यार. और प्यार जो होता है उन चीजों से ऊपर होता है. जब आपको वाकई में किसी से प्यार हो जाए तो फिर आप उसका बैंक बैलेंस नहीं देखते. और लेकिन अब आज के दौर में अम्मा अब्बा थोड़े समझदार होते हैं. वो कहते हैं बेटा तुम पे तो ये जरा चढ़ा हुआ है कुछ, लेकिन ये बाकी चीजें भी होनी चाहिए. लेकिन खैर ऐसा नहीं होता. और जिंदगी का कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि पैसा हो तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी, या अगर आप बहुत अच्छे मिजाज के हैं तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी. जिंदगी में हर चीज की जरूरत होती है, पैसे की भी, प्यार की भी. और प्यार भरा हम गाना अब आपके लिए प्ले कर रहे हैं. क्या कहता है, एक खूबसूरत लड़की जो न जाने कौन थी. वाइटर साइंस का ये हमारा स्लॉट होता है, आइए सुनते हैं.

0: 11.99%.
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99% 100 FM
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: And Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आरजे समीहा के साथ.
4: जी आप हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं भी आपके साथ साथ हूँ और आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं. आज हम बात कर रहे हैं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए और मतलब लोग क्यों इतना ज्यादा मेहनत करते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए. और मेहनतें जी, बॉडी बिल्डिंग हो रही है, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं और पहाड़ों पे चढ़ा जा रहा है, ओलंपिक्स में खेला जा रहा है सिर्फ इसलिए कि दुनिया की वाह वाह हो. कुछ लोग अंदर से बहुत मोटिवेटेड होते हैं, वो बस कुछ अचीव करना चाहते हैं. उनमें कुछ ज़्यादातर चीज़ें लोग दुनिया दिखावे के लिए करते हैं, फिर शो भी मारते हैं. और कुछ कल्चर्स में बहुत दिखावा होता है और पाकिस्तान, इंडिया और जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ है ही कि शनिकन आग लगाना इंडिया हमें इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होता है, हम इंडिया को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे होते हैं. और मतलब हम अगर एक चीज जीत जाए उनसे तो हम इतनी शो मारते हैं और वो तो हमसे जीत जीत के भी बोर हो चुके हैं कि यार तो हर चीज में हम हरा दिया. वो कहते हैं कुछ किसी से भी हम हारे हैं मगर पाकिस्तान से नहीं हारे. खैर, आप लोगों के मैसेजेस हमारे पास आए हुए हैं बड़ी देर की मेहरबान. आते आते अदनान अहमद है, ये कौन सा टाइम है वैसे, हम कितनी देर में आ पाए. इसके अलावा अली रजा का एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आया हुआ. अली रजा कह रहे हैं कि दो तरह के इम्प्रेस होने के तरीके हैं. एक इम्प्रेस होना वो है जब हम दूसरों की अच्छी चीजें देखकर इम्प्रेस होते हैं, जैसे किसी का अच्छा पर्सपेक्टिव के लिए, मिसाल के तौर पे दीन के मामले में या किसी की पढ़ाई के मामले में, या फिर कोई अच्छी पोजीशन पर हो तो वहां तक पहुंचने के लिए. जैसे हम आपको देखकर भी इम्प्रेस होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखकर. ओह माय गॉड, सुबह से अब तारीफ हुई है मेरी. तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्रेस होना होता है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका जहन किस तरफ सोचता है. फिलहाल तो मैं आपका मैसेज देखकर बड़ी इम्प्रेस हो गई हूँ, लेकिन हाँ ऐसा है कि लोग आपकी सोच है. मुझे ना मेहनत करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं. कभी आपने देखा है कि आप किसी सड़क पे बैठे हो बिल्कुल इनविजिबल होके, जैसे कि आप बस लोगों को देखें, आते जाते लोगों को देखें. पहले तो होता था यहाँ पे, अब तो लोग मोबाइल ही देख रहे होते हैं भले कहीं भी बैठे. पहले लोग दूसरों को दिखते थे. कभी आपने किसी मोची को देखा है काम करते हुए और वो कितनी मेहनत से काम कर रहा होता है, कोई देखे या ना देखे, या किसी आपने कभी चावल की फसल लगते हुए देखा है, उसे कोई नहीं देख रहा, वहां कोई कैमराज नहीं होते, बस वो मेहनत कर रहा है. तो मुझे आई लव वॉचिंग पीपल वर्क. कोई बंदा जब कोई काम कर रहा होता है, उसे नहीं पता कि कोई उसे देख रहा है, बस वो काम कर रहा है क्योंकि उसे काम करना है. या किसी को मेहनत से काम करना बहुत अच्छा लगता है, या किसी को पेंटिंग करते हुए आप देख रहे होता है, या किसी को किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होते हैं, भले वो पढ़ाई है या भले वो कोई स्पोर्ट है. इट इज सच अ ब्यूटिफुल साइट टू सी पीपल नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीबडी बट देमसेल्व्स. वो सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तन्हाई में मेहनत कर रहे होते हैं. और बहुत सारे लोग जो ये मेहनत नहीं कर पाते, तो मेरे अबू कहते थे वो फिर ये वाले सहारे ढूंढते हैं, महंगे ब्रांड्स, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां. उनको पता है कि उनके अपने अंदर इतना खोखलापन है, तो यही चीजों से लोग उनकी इम्प्रेस होंगे क्योंकि उनके अंदर कुछ है नहीं, ना ज्यादा मेहनत, ना ज्यादा टैलेंट, ना ज्यादा स्किल. और मैं इम्प्रेस होती हूँ तहज्जुद गुजार लोगों से. मुझे लगता है कि फजर की नमाज और तहज्जुद की नमाज बहुत किस्मत वालों को मिलती है. लोग फजर तक जागते हैं और फिर सो जाते हैं. इस चीज से मैं बड़ी इम्प्रेस होती हूँ कि यार मतलब क्या कहते हैं यार, क्या सीन है कराची में जहां पागलों की तरह लोग फजूल के अंदर जाग रहे होते हैं और अपनी नींदें बर्बाद कर रहे हैं, सेहतें बर्बाद कर रहे हैं, आंखों के गिर्द हल्के हैं, बिल्कुल भी नूर तो है ही नहीं. तो और भी, लेकिन जब लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो अपनी सेहत का ख्याल भी करते हैं और वो जो नमाजी होते हैं और सिर्फ ये कोई देख रहा है उनको नहीं, जस्ट फॉर देयर ओन सेक, जस्ट टू बिल्ड द कनेक्शन विद अल्लाह. अब तो मौलवी भी आके मुझे लगते हैं प्रेस ही कर रहे होते हैं कि जी हमारे घर आते हैं वो जी दुआ करने जुम्मे के जुम्मे जी. और मुझे तो क्या हम खुद दुआ नहीं कर सकते, खैर मेरी अम्मी बुला लेती हैं, हाँ जी फलां की मकफरत हो, लिटरली उतनी जोर जोर से दुआ कर रहे होते हैं. इसमें भी पैसे हैं, इससे भी इंप्रेशन है. खैर, तो खैर बेलौस लोग, मोहब्बत करने वाले लोग मुझे इम्प्रेस करते हैं. अच्छा जी, और अदनान अहमद आपका मैसेज, अदनान अहमद जल्दी भेजा कर, इतने तवील मैसेज है. मुझे वो बोलेंगे मैडम आप जाएंगी कि नहीं, عدنان احمد کے سچ یہ کہ ہم سب کہیں نہ کہیں دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے جیتے ہیں, کبھی اچھے کپڑے پہن کر, کبھی اچھی گاڑی کی سٹوری لگا کر, کبھی اچھی انگریزی بول کر. انگریزی سو ٹرو, یہ انسان کی فطرت ہے. مسئلہ تب بنتا ہے جب اپنی زندگی دوسروں کی پسند پر گزارنے لگے. متاثر کرنا برا نہیں, لیکن اپنا آپ کھو کر کسی کو متاثر کرنا سب سے بڑی ہار ہے. آج کل ہم جی نہیں رہے, ہم دکھا رہے ہیں, ہم کھانا کھانے سے پہلے فوٹو لیتے ہیں, خوش ہونے سے پہلے اسٹیٹس سوچتے ہیں, اینڈ ہم نے زندگی کو پرفارمنس بنا دیا, سوشل میڈیا کو اسٹیج. یاد رکھیں جو لوگ آپ کے دکھاوے کی وجہ سے پسند کرتے ہیں وہ آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس لیے متاثر کرنے سے زیادہ مخلص ہونا سیکھے. لوگ وہ نہیں کرتے جو انہیں پسند ہے, لوگ وہ کرتے ہیں جو دوسروں کو پسند آئے. اسی چکر میں اپنی پسندیدہ زندگی گزارنا ہی بھول جاتے ہیں. ہاں جی, جیسے کہ مجھے لوگوں کو بتانے کے لیے میں انگریزی گانے سے نہیں لگاتی کہ مجھے لوگوں کو امپریس کرنا ہے, اور بہت سارے نئے گانے آتے رہتے ہیں مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے. بکواس گانے لٹرلی کہیں بھی کانٹینٹ نہیں آ رہا, لیکن مجھے کئی پرانے اچھے گانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں تو میں تو یار یہ والا گانا تو میں نے لگانا ہے, مطلب لٹرلی. تو خیر, تو یہ مجھے جو ہے نا, عدنان احمد یو سو گڈ سیریسلی, مطلب واقعی میں. خیر, تو ہمیں اب آپ دیجئے اجازت. عابد امیر کہتے ہیں میں بڑا امپریس ہوتا ہوں لوگوں سے ان کو اللہ پاک نے کسی قابل بنایا ہوتا ہے, ان کی خوش مزاجی خوش اخلاقی بڑے مزیدار ہوتے ہیں, بڑے خوش نما لوگ, بڑے متاثر کرتے ہیں, خاص پہ قابل لوگ خوش نما ہوں. ہاں, ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ امیر بھی ہو بندہ اور خوش مزاج بھی ہو, زیادہ تر ایسا تو سڑے ہی لوگ ہوتے ہیں لٹرلی. تو گدا گاڑی والے زیادہ مجھے خوش مزاج لگ رہے ہوتے ہیں, انرجیٹک. چائے کے ڈھابے والے زیادہ خوش مزاج لگ رہے ہوتے ہیں. جو کبھی بڑے ہوٹل میں جاؤ تو وہاں پہ کپڑے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بل ہے کہ نہیں دینے کی سکت. اینی ویز آئی ہیو ٹو گو ناؤ. جاتے جاتے میں کڑیاں لاہور دیا, لاہور کے اندر, بیکاز آئی ایم فرام پنجاب. تو میں وہاں پہ نا شو آف بہت ہے, مطلب ہر چیز شریکانو جلانے کے لیے, اور جی بڑے مہنگے شوق, اور اچھے کپڑے, اور ہر چیز ان کی مطلب فرسٹ کلاس ہے. پسند بھی وہ دس دس دن بنائیں گے. کراچی کے اندر ہمارے چیف منسٹر کچھ ہمارے لیے بھی سوچ لو, کچھ کمپیٹیٹو ہو جاؤ کہ یار لاہور میں دس دن کا بسنت ہے کم سے کم, یا تین دن کا تو کوئی اوکیجن ہو. ہمارا تو اوکیجن یہی ہے, گھر میں پانی آ رہا ہے, پانی بجلی گیس اگر آپ کے گھر میں آ رہی ہے ہم جنت میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یہی ہماری خوشیاں ہیں. اور وہاں دیکھو لوگ بسنتیں بنا رہے ہیں, پتنگوں پہ خرچ کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے پتنگ ہوتی کیا ہے, اس کو اڑاتے کیسے ہیں. خیر چلے, خیر جو بھی حال ہے, سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے. اور لاہور کی بسنت کی یاد میں جو ہم یہاں نہیں بنا رہے, آئی ایم پلینگ ابرار الحق سانگ کڑیاں لاہور دیاں, جہاں پہ صرف اور صرف شوخیاں اور دوسروں کو امپریس کرنا ہے. ٹیک کیئر, ہیو اے ونڈرفل ڈے. تھینک یو سو مچ فار یور لولی میسجز. اللہ حافظ.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99% 100 FM
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
5: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
3: किसने कहा था पैसे

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai
2: aaram. 11.99%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
2: 11.99% 100 FM
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
6: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उम्रा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रा पर जाएं।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड, बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
8: FM 247365

0: 5 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. 11.9% 11.9%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99% 100 FM।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: 100 FM।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन OTP की तस्दीक या मखसूस USSD को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, PTA टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो OTP शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है, तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
10: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
11: FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: Let's celebrate
2: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: Naya Pond's Body Lotion jisme hai 100 tola gold. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365.
3: FM 100.
4: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji, as usually hungi aapse khoob sari baatein share karenge, kuch information saath hi saath program mein hoga bahut sara music, puchhenge aapse sawal, janenge aapke haal ahwal aur bhi hungi bahut sari baatein. तो चले जी करते हैं जल्दी से प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज जो के होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. सो लेट्स बिगिन प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज करते हैं, फिर वापस आकर आपको तरीका कार बताएंगे कि आप कैसे बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. आपके हाल अहवाल जानना भी जरूरी है और भी बहुत सारी बातें जरूरी हैं. तो सबके लिए भाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जी कर लिया जाए प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज. सो लेट्स बिगिन.

Yes, everybody, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि आगाज हो ही चुका है तो आपको बताएंगे तरीका कार कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ आप आरजे फातिमा खान का ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी कॉमेंट कर सकते हैं। और अपने हाल हवाल बता सकते हैं कि भाई आप सब जो हैं वो कैसे हैं, तबीयतें वबीयतें आप सबकी ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, कोई खास बात है या फिर वही पुरानी लाइफ चल रही है। अक्सर औकात हम किसी से किसी के हाल हवाल पूछे ना कि भाई आप कैसे हैं, तो लोग कहते हैं बस क्या वही जिंदगी, यानी कि जिंदगी में कुछ नया नहीं। तो क्या आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी चल रही है या फिर है कुछ इंटरेस्टिंग, तो भी आप हमें बताएं। प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज हो चुका है, आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी ट्रैक की जाने भी चलते हैं और आपने जल्दी से मैसेज कर अपनी हाजिरी लगानी है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस।

Yes, my friend. So I'm back again. और इसी के साथ साथ आज है 6th of October. So happy birthday to you. अगर आज आप में से किसी की birthday है, कल जो है वो भाई टीचर्स डे मनाया जा रहा था बड़े जोश खरोश के साथ. मैं देख रही थी बहुत सारे स्कूल्स वालों ने जो थी वो अपनी अपनी पिक्चर्स लगाई हुई थी. एंड ऑल दो तो बड़े एक स्पेशल डे होता है और टीचर्स के लिए भी एक बड़ा एक रिस्पेक्टफुल डे होता है जहां पर जो है वो बच्चे जो है बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं टीचर्स को. और टीचर्स का वाकई में हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन रोल है जिसकी वजह से आज हम जहां कहीं भी बैठे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स का ही हाथ है, उन्हीं की सपोर्ट है जिसकी वजह से हम जो है वो अपने कामों में अब माहिर हो चुके हैं. सो टीचर्स का क्रेडिट तो भाई बनता है बिल्कुल. और एक स्पेशल ये 5th अक्टूबर ही एक ऐसा दिन होता है जब टीचर्स को जो है वो मजीद अहमियत दिलाई जा रही होती है इस दिन. तो ये बड़ा खास दिन होता है और मुझे लगता है कि ऐसे खास दिनों को जरूर मनाना चाहिए ताकि सामने वाला भी अपनी इम्पोर्टेंस को जाने. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के दिनों में हम उन लोगों को अप्रिशिएट करें जो कि बहुत सारा अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं. एंड येस, टूडे इज 6th अक्टूबर. तो आज भी कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं, मैंने कहा चलो जी लगे हाथों जरा नजर डाल लेते हैं. तो भाई आज पता है क्या दिन मनाया जा रहा है, आज ना नेशनल नूडल डे मनाया जा रहा है. नूडल जो हम सबकी जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करने लगे हैं आज कल, बिकॉज एवरीबडी लव्स नूडल्स. ये आपकी नाइट क्रेविंग के लिए बेहतरीन है, ये आपकी मंचिंग के लिए बेहतरीन है, ये आपका कुछ खाने का दिल चाह रहा है उसके लिए बेहतरीन है. सो भाई नूडल्स जो है ना वो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं. आज इंटरनेशनल तो नहीं लेकिन नेशनल डे मनाया जा रहा है नूडल्स का. सो डू यू लाइक नूडल्स सो मच, टू मच और लिटिल बिट? तो कितने पसंद है आपको नूडल्स, हमें जरूर बताएं. कोई आपकी स्पेशल मजे की रेसिपी है तो वो बताएं. अच्छा नूडल्स में भी ये होता है कि जी इंस्टेंट नूडल्स या फिर जो एक वाले दूसरे वाले नूडल्स आते हैं जिसमें आप अपने स्पाइसेस को एड ऑन करके बना रहे होते हैं, तो कौन सी नूडल्स आपको पसंद है ये भी आज आप हमें बताएं ताकि हमें बहुत सारी रेसिपीज भी पता चलें कि भाई कौन किस तरह जो है वो नूडल्स बनाता है. क्योंकि नूडल्स ऐसे हैं कि ऐसा शायद ही कोई हो सकता है जो कहे कि हम नहीं खाते. तो नूडल्स हम खाते तो हम सब हैं और आजकल वही फिर वही वाली बात, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग वीडियोज जो है वो नूडल्स को लेकर बहुत सारी बन रही है. भाई किसी को जो है वो स्पाइसी नूडल्स पसंद है, तो किसी को आलू ओलियो नूडल्स पसंद है, तो किसी को वो हॉट चिली ऑयल वाली पसंद है. तो हर जगह जो है ना वो आजकल ये वीडियोस भी बड़ी ट्रेंडिंग है और वाकई में उसमें से कुछ रेसिपीज बहुत मजे की भी हैं. किसी को शूपी नूडल्स बहुत पसंद है और ये हॉट पॉट भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो कोई वो शौक से खा रहा है. तो हर जानब नूडल्स की अलग अलग वैरायटी चल रही है. तो आपके पसंदीदा नूडल्स कौन से हैं हमें जरूर बताएं. और आपकी कोई बड़ी मशहूर जमाना रेसिपी है तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं. यस, तो आज नेशनल नूडल्स डे मनाया जा रहा है तो मैंने कहा चलो जी सवाल से भी आप लोगों तक मालूमात फराहम करते हैं कि ये दिन भी मनाया जा रहा है. आपका पसंदीदा नूडल्स बनाने का तरीकाकार क्या है हमें बताएं. मुझे तो लगता है कि नूडल्स हो तो स्पेगेटीज स्पेशली, जैसे कि नूडल्स या स्पेगेटीज कह लें, तो उसमें बहुत सारा चॉप्ड गार्लिक हो और वो जरा क्रंची क्रंची हो तो बड़ा मजा आता है. स्पेशली चाउमिन में तो मैं कहती हूँ गार्लिक का. वैसे मुझे लगता है ऑल ओवर हर खाने में ना गार्लिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, स्पेशली तब जब वो छोटे छोटे पीसेज में क्रिस्पी होके डला हो तो मजा ही आ जाता है भाई. तो आपको कौन से नूडल्स पसंद है हमें बताएं. चलते हैं ट्रैक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के बाद. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस.

0: कि जो बात है वो किसी शो में नहीं है। अरे ऐन नवाजिश, आपके बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि जी इनके लंच में जो है वो आज मिक्स सब्जी है, दैट्स ग्रेट। और कहते हैं कि आपके लंच में आई लाइक स्पाइसी नूडल्स, यस पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। चलें जी, पूरी कोशिश करेंगे इस ट्रैक को शामिल करने के लिए। स्पाइसी नूडल्स जो हैं वो रशीद खान को अच्छे लगते हैं। स्पाइसी नूडल्स का भी जिक्र किया उन्होंने तो मुझे याद आया कि नूडल्स में ये भी तो होता है कि जी सॉसी नूडल्स, यानी कि जिसमें थोड़ा ज्यादा पानी रख के खाया जाता है, वो सबको बड़े पसंद हो रहे होते हैं। वो भी समटाइम्स आई रियली लाइक इट, लेकिन कभी कभी मुझे वही वाले ज्यादातर अच्छे लगते हैं, थोड़े ड्राई ड्राई से होते हैं और उस पर अच्छा सा मसाला वसाला डला हुआ हो। लेकिन ऑल दो स्पाइसी नूडल्स आर सो यम्मी। और आजकल की जनरेशन ने तो मेरे ख्याल से नूडल्स का सबको फैन ही कर दिया। नूडल्स हो गए, पास्ता हो गया, मतलब अगर इसकी पूरी कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए, जिसमें अल्फ्रेडो पास्ता हो गया, अब उनकी शेप्स का डिफरेंस होता है, बट इन शॉर्ट होती सारी यही चीजें हम उनके शेप के अकॉर्डिंगली उन्हें बना रहे होते हैं। एंड अल्फ्रेडो पास्ता इज ऑल्सो वेरी यम्मी। लेकिन अल्फ्रेडो पास्ता भी एक ऐसा पास्ता है जो कि सब बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन आपको हर तरफ हर जाने ना वो वाला टेस्ट नहीं मिलता बाहर जैसा आप चाह रहे होते हैं। सो ये है कि अवेलेबिलिटी तो उस पास्ते की हर तरफ है, लेकिन टेस्ट आपको ना हर तरफ ऐसा नहीं मिलता। और अभी लास्ट मैंने जो अल्फ्रेडो पास्ता खाया तो उसकी वजह से यकीन करें जैसा लग रहा था कि आई फील सो गुड, क्योंकि वो बहुत मजे का था। और अक्सर औकात ऐसे इत्तफाकात हो जाते हैं जिंदगानी में कि आप बड़े खुश हो जाते हैं जब आपको कोई बड़ी मजे की चीज मिल जाती है, और वो आपके मूड को ना एक्चुअली में बहुत अच्छा कर देती है। तो ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में भी हुआ था कभी मैंने कुछ दिनों पहले ऐसा है अल्फ्रेडो पास्ता, इट वाज सो गुड। और कोई ऐसी अच्छी मजे की चीज आप खा लेना तो बहुत दिनों तक आप उसकी याद में डूबे रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब हमने खाया था, मैंने खाया था अल्फ्रेडो पास्ता। आई डोंट रिमेम्बर द डे एंड टाइम, बट आई थिंक 2 हफ्ते हो गए हैं, तो आई रियली लाइक इट। खैर जी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की जानिब चलते हैं और आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: facebook.com/fm247365 fm247365

All right, जी, so I'm back again. उसी के साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थोड़ा थोड़ा गला खराबी की जानिब जा रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है मुझे, लेकिन वैसे आई एम फाइन. कहते हैं कि जी मैं भी गुड हूँ, आपके शो

यस एवरीबॉडी, सो आई एम बैक अगेन. और मैं सोच रही हूँ कि जी जब वापस आ ही चुके हैं तो क्यों ना आपको एचयूएल फ्रीडम अकाउंट के हवाले से कुछ मालूमात फराहम करते चलते हैं. हर बिजनेस ओनर की जरूरत एक ऐसा अकाउंट जो दे सहूलत भी और आजादी भी. एचबीएल ही आज ही एचबीएल फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और फायदा उठाएं मुफ्त बैंकिंग सहूलियात का. कारोबारी अदायकी हो या रोजमर्रा ट्रांजैक्शन, एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ हर काम अब होगा ज्यादा आसान, ज्यादा स्मार्ट. अपने बिजनेस को दें डिजिटल बैंकिंग का पावर अप. पाकिस्तान की बेहतरीन मोबाइल बैंकिंग ऐप और मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग के साथ सिर्फ एचबीएल फ्रीडम अकाउंट में.

ओके सो आई एम बैक विद द ट्रैक और ट्रैक के साथ हम वापस आ चुके हैं और भी हमारे पास मैसेजेस भी आ चुके हैं. हमें मैसेज करते हैं समी शेख, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हो आप? सलाम सब सुनने वालों को. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं. कहते हैं कोई अच्छा सा सॉन्ग आपकी पसंद का डेडिकेट टू मी, एक मंथ बाद इंशाल्लाह मेरी शादी है. अरे वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी शादी. सो बस एक मंथ रह गया, यानी कि वेरी लेस टाइम यू हैव. सो मतलब बहुत सारी मसरूफियात, और मुझे अंदाजा है कि शादी के घरों में जो मसरूफियात होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है. मतलब इतने सारे काम, इतनी सारी मसरूफियात, और उसी के साथ साथ ना हर शादी के घर में ये प्लान जरूर हो रहा होता है कि हम ना अपने सारे काम बिल्कुल शुरू में निपटा लेंगे ताकि शादी वाले दिनों में ना हमें कोई भागदौड़ ना करनी पड़े या ये. लेकिन मैं कहती हूं सबसे बेकार तरीन ये बात होती है, क्योंकि आप जितनी भी कोशिश कर लें, वो एंड वाले दिनों में आप भाग रहे होते हैं, चीजें ढूंढ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ अल्लाह. मतलब एक तो बड़ा मजा आ रहा होता है, क्योंकि शादी वाले घरों की बात ही अलग होती है. और उन्होंने कहा कि भाई कोई अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दें. तो समीर शेख, आपकी शादी हो रही है, आप हमें बताएं कि आप कौन सा ट्रैक सुनना चाहते हैं, या अपनी फियांसे को कोई डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें बताएं. लेकिन अगर जब बात शादी की हो ना, तो शादी के गानों में उमूमन तौर पर मेहंदी के गाने ज्यादा होते हैं, जो कि सबको पसंद आ रहे होते हैं सुनने में. तो हम आपको ये ट्रैक डेडिकेट कर देते हैं. दिस ट्रैक आई रियली लाइक इट, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये गाना मुझे मेरी बहन की शादी के बाद से ज्यादा अच्छा लगा था. तो हम आपको ये डेडिकेट करते हैं, आप इसे एंजॉय करें. और इसके अलावा भी अगर कोई ट्रैक आपको लगता है जो आपको डेडिकेट करना है तो आप हमें बताइएगा, हम इसे करते हैं शामिल. सो एंजॉय.

Yes, my friend, so I am back. हम आ चुके हैं वापस और गुफ्तगू का सिलसिला भी आप लोगों के साथ जो है वो जारी है. बहुत सारी बातें हम आप लोगों से कर रहे हैं और भाई हमारे लिसनर ने बताया कि समी शेख की शादी भी हो रही है, तो इस हवाले से भी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई शादी ब्याह की तकरीबात में एक अलग ही मजा आ रहा होता है, एंजॉयमेंट चल रहा होता है एंड सो मच मसरूफियात में मजा बड़ा आ रहा होता है और एंजॉयमेंट भी हो रहा होता है. और अच्छी बात यह कि जब मौसम अच्छा हो जाता है ना तो आपको तैयार होने में भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है. अब अच्छे से रेडी होते हैं और अपने कपड़ों को डिसाइड कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा ना इस शादी ब्याह की तकरीब में सबके अच्छा इसमें बड़ी मजे की बात ये होती है कि दोनों की बड़ी मसरूफियत होती है, मर्द हजरात की भी खवातीन की भी. सब लोग जो है ना वो अपने अपने तौर पर अपने अपने काम कर रहे होते हैं, मसरूफ होते हैं, तो आता बड़ा मजा है भाई इस टाइम पे. एंड एज ऑलवेज से कि भाई एक अल्लाह ताला ना एक इंस्टेंट एनर्जी भी देता है घर के तमाम लोगों को काम करने के लिए, मजीद एक ताकत हमें मिली जाती है क्योंकि हम इतना थक जाते हैं लेकिन उसके बाद भी ना हमारे अंदर फुल एनर्जी होती है कि हम लोगों को एंटरटेन भी कर रहे होते हैं, अपने काम भी कर रहे होते हैं. तो ये एक इंस्टेंट एनर्जी जो है अल्लाह ताला की जानिब से हम सबको मिल जाती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमारे एनर्जी लेवल को कर देती है मजीद हाई. अच्छा जी, हमारे पास एक और मैसेज आया है. कहती हैं, सलाम आपी, नूडल्स तो मेरे फेवरेट हैं, मैं तो नई नई रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ. ओके, दैट्स ग्रेट. नई नई रेसिपीज तो आप ट्राई करती हैं लेकिन कोई आपकी स्पेसिफिक मोस्ट फेवरेट रेसिपी कौन सी है ये आप हमें जरूर बताइएगा. इसी के साथ साथ हम लोग ट्रैक की जानेब भी जाएंगे और रशीद खान ने भी हमसे कहा था, ट्रैक की रिक्वेस्ट की हुई है और वो कह रहे होंगे अभी तक ना आपने मेरी पसंद के ट्रैक को शामिल नहीं किया, क्यों? तो बिल्कुल जी, करेंगे हम आपके पसंद के ट्रैक को भी शामिल. और भी मेरे पास रिक्वेस्ट मौजूद हैं लेकिन चलें जी, पहले हम रशीद खान की पसंद के ट्रैक को शामिल करेंगे, फिर वापस आकर और भी ट्रैक को शामिल करेंगे. अच्छा भाई, कल मैंने वो सजाद अली वाला जो गाना लगाया था उसकी रिक्वेस्ट आज भी मेरे पास आ चुकी है तो उसे भी शामिल करेंगे. सो वी हैव लाइक सो मैनी रिक्वेस्ट जिसे हम करेंगे शामिल. हालांकि रिक्वेस्ट शो नहीं है लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलो जी पसंद के ट्रैक्स को शामिल कर लेते हैं या फिर आपके पसंद के सिंगर की आवाज को शामिल कर लेते हैं, यानी कि कोई ट्रैक आपको सुना देंगे. लेकिन अभी हम जा रहे हैं इस ट्रैक की जानेब और आते हैं वापस हम इस ट्रैक के बाद. सो इंजॉय एंड देन वी विल बी राइट बैक. तो अभी बहुत सारी बातें हैं और चिट चैट बाकी है मेरे दोस्तों, तो कहीं चाहिए का मत क्योंकि हमारे वापस कुछ ही देर में.

0: Express 115 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111178
0: facebook.com/fm247365
3: fm247365. You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

on FM 100 Pakistan. Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan and I'm back again. Main aa chuki hoon wapas aur aap sab sun rahe hain program Lunch Time Special with me Fatima Khan. 12 se 2 ke darmiyan hota hai mera aur aapka saath aur ye saath qaim o daim hai. तो जल्दी से आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है KHI लिखना है स्पेस देना है अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे तो इस तरीकाकार के जरिए भी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं अपनी अपनी हाजिरी लगाएं हमें अपने हाल अहवाल बताएं कैसी चल रही है आपकी जिंदगानी ये भी आप हमें बताएं एंड आई होप कि आप सबकी जिंदगानी अच्छी चल रही होगी तो चलें जी प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपको एक ट्रैक डेडिकेट करते हैं विच इज टू सिमिलर टू वर्ड्स माई प्रोग्राम मतलब हमारे प्रोग्राम से मिलता जुलता सा एक ट्रैक है जो आज हम आपको कर रहे हैं डेडिकेट सो एंजॉय

ओके जी, सो प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत हो गई कायम, यानी कि एक अदर ट्रैक हमने कर दिया आपको डेडिकेटेड. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो ये होता है कि आपके लंच में क्या है. तो क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, जल्दी से हमें मैसेज करें और हमें बताएं कि आपके लंच में इस वक्त क्या है. बिरयानी है, निहारी है, कबाब है, कढ़ाई है, सब्जी है, फल है, या फिर कुछ और मुनफरद सा बहुत मजेदार सा आपके लंच में मौजूद है. तो हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार. और जरीनूर कहती हैं कि मेरी फेवरेट डिश चिकन आलू की बिरयानी है और मुझसे अच्छी बनती है. ओके, जबरदस्त है. कहती हैं आज खाने में भिंडी गोश्त है. ओके, जबरदस्त. अच्छा भाई, लुकपल कहती हैं कि मैं तो ज्यादा शौक से नहीं खाती नूडल्स. रियली, आप नूडल्स ज्यादा शौक से नहीं खाती? वाह भाई वाह, ये तो एक नई बात हमें पता चली, बिकॉज लड़कियां बड़े शौक से नूडल्स जो हैं वो खाती हैं, और नो डाउट नूडल्स लगते भी बहुत मजे के हैं. एंड अब भाई सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मैंने कहा था कि कोई नूडल्स की रेसिपी जो आप लोग बड़े शौक से ट्राई करती हैं और बनाती हैं, खाती हैं, तो बता सकती हैं. अच्छा, नूडल्स बनाना कोई ऐसा डिफिकल्ट चैलेंज भी नहीं है, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ खवातीन ही बनाती हों, मर्द भी बना सकते हैं भाई नूडल्स. और आजकल के टाइम में सो एवरीबडी इज प्लेइंग देयर इम्पोर्टेंट रोल इन किचन ऑल्सो. सब मिल बांट के काम करते हैं, और ये अच्छी बात है कि काम जो है वो हमें मिल बांट के सबको एक साथ करने चाहिए, तो काम जो है वो बड़े अच्छे से होते हैं. तो ये अगर आप करते हैं ऐसा तो बहुत अच्छा करते हैं. सो यस, मिल बांट के काम करें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी आदत है. और इस हम अक्सर औकात सोच रहे होते हैं कि नहीं, ये काम तो किसी और का है, अगर ये काम आप भी कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई या मुजायका नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि सब मिल बांट के काम करें. आज उसकी तबीयत ठीक नहीं तो आप करें, और कल उनकी तबीयत ठीक नहीं तो आप, मतलब दोनों मिल बांट कर काम करें तो अच्छा रहता है. तो भाई लंच में क्या है हमें जरूर बताएं. आज जो था वो नेशनल नूडल्स डे मनाया जा रहा था, तो इसलिए मैंने कहा जरा नूडल्स का जिक्र करते हैं और लोगों से जानते हैं कि आप कौन कौन सी रेसिपीज ट्राई करते हैं नूडल्स की. और इसके साथ साथ आज कोई और मजीद इंटरेस्टिंग डे, हाँ अच्छा, आज एक और दिन मनाया जा रहा है जिस दिन का नाम है नेशनल ट्रांसफर मनी टू योर डॉटर डे. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जो है वो अपनी बेटी को पैसे ट्रांसफर करेंगे. आज ये दिन मनाया जा रहा है, यार बड़े मजे मजे के दिन मनाए जा रहे होते हैं, ये कैसा दिन है. तो भाई जितने भी अब्बा सुन रहे हैं तो वो अपनी बेटी को कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि आज ये दिन मनाया जा रहा है.

और उसी के साथ साथ टैकोज डे भी मनाया जा रहा है, ये भी नेशनल डे है एंड इट्स सो नाइस। आजकल वापस फिर वे वाली बात हो गई है, जो जो चीजें आ रही है मेरे सामने वो मुझे याद आ रहा है कि हाँ भाई सोशल मीडिया पर ये चीजें भी आजकल ट्रेंड कर रही है। टैकोज का भी एक ट्रेंड आ चुका है एंड नो डाउट टैकोज बहुत मजे के होते हैं, अच्छे से बने हुए हों, और मुझे लगता है क्रंची वाले टैकोज ज्यादा मजे के होते हैं। कुछ लोगों को क्रंची वाले नहीं पसंद, वो खैर आपकी चॉइस है, लेकिन आज टैकोज का भी डे मनाया जा रहा है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। क्या कभी आपने टैकोज ट्राई किए हैं या पहली दफा इनका नाम सुना है? अगर ट्राई नहीं किए तो जरूर करें, और आपके लंच में क्या मौजूद है हमें जल्दी जल्दी मैसेज करके बताएं। हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं। सजाद अली की आवाज की जानिब जाएंगे और आएंगे वापस इस ट्रैक के बाद।

हेलो माय लिसनर्स, सो आई एम बैक अगेन और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान। तो वापस आ चुके हैं, तो उसी के साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए कि कामयाब कारोबार की पहचान है स्मार्ट फैसले। आज ही एचबीएल फ्रीडम अकाउंट अपनाएं और बैंकिंग की झंझट को करें अलविदा। बिजनेस चलाएं एतमाद के साथ, क्योंकि एचबीएल फ्रीडम अकाउंट देता है आपको वो सहूलियात जो हर कारोबार को दरकार है। तो जी हाँ, क्या सोचा है आपने? एचबीएल फ्रीडम अकाउंट आप कब अपना रहे हैं, आप कब खुलवा रहे हैं? तो जल्दी से खुलवा लें जी, क्योंकि ये सहूलियत मौजूद है, तो जल्दी से इन सहूलियत का उठाएं आप फायदा।

के जी सो आप लोग इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे जो कि हम सबका बड़ा फेवरेट रह चुका है, रह चुका है नहीं, स्टिल वी रियली लाइक इट। बट ये था कि ये जब ड्रामा आया था तो भी छा गया था, अभी इस ड्रामे को खत्म हुए लगभग एक से दो हफ्ते ही हुए हैं, बट स्टिल वी लव दिस ट्रैक ऑल्सो एंड द ड्रामा ऑल्सो बिकॉज बहुत ही अच्छा ड्रामा था ये। और ताबिश और बीना की कहानी को सबने बड़ा पसंद किया, यानी कि ताबिश का किरदार जो है वो एहसन खान ने और बीना का किरदार जो है वो उर्वा हुसैन ने प्ले किया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। और इस ट्रैक को आप लोग एंजॉय कर रहे थे एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन। तो भाई साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हम अक्सर औकात जो है वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए डाइट के तौर पर वी वर ट्राइंग टू अवॉइड शुगर, और हम ये कोशिश करे होते हैं कि जी हम शुगर जो है वो नहीं लेंगे, तो हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, और अगर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे ना तो जी हम वो पियेंगे जो जीरो होगी। लेकिन रिसर्च के मुताबिक इस चीज का पता लगाया गया है कि जो जीरो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ये ज्यादा डेंजरस होती हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्योंकि इसमें 40% हायर डायबिटीज का रिस्क होता है। तो अगर आप ये सोचकर ही पी रहे हैं कि जी ये तो जीरो है, ये तो डाइट है, इसमें इतनी शुगर नहीं है, तो नहीं जी, रिसर्च के मुताबिक पता लगाया गया है कि 40% ज्यादा हायर डायबिटिक रिस्क इनमें होता है। तो अगर आप ये सोचकर पीते हैं कि जी आप सेफ हैं इसे पीने के बाद और आपका शुगर इनटेक कम होगा या ये इतनी मुजर नहीं है, तो नहीं जी, ये काफी मुजर है, तो इस चीज का आपने एहतियात और ख्याल करना है। अच्छा भाई, नो मोर शुगर केक, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे विद बिरयानी केक। ये एक नई चीज निकली है जो कि है बिरयानी केक, यानी कि बिरयानी को जिस तरह हम वो कहते हैं ना लेयर लगाते हैं, उसी तरह आप उसकी लेयर लगा के इसकी प्रेजेंटेशन के जरिए आप अपने जो बर्थडे के केक्स हैं या किसी भी और सेलिब्रेशन का केक, अब आपको जो है वो शुगरी केक्स काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने करना कुछ यूं है कि आपने बिरयानी केक काटना है। आई मस्ट से कि भाई ये तो बड़ा ही मजेदार सा बनेगा अब बिरयानी केक। सो ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एंड उसी के साथ साथ जरीनूर कहती हैं कि वैसे जब कुछ समझ नहीं आता तो जल्दी से नूडल्स, चिकन, शिमला मिर्च और टमाटर वाले नूडल्स बन जाते हैं और कभी कहीं अच्छे लगते हैं। ओके, वाह भाई, ये नूडल्स तो बड़े अच्छे हैं, टमाटर, शिमला मिर्च और चिकन डाल के जो है वो जरीनू नूडल्स बनाती हैं और कहती हैं कि ये वाले अच्छे बन जाते हैं और कभी कहीं अच्छे लगते हैं। जबरदस्त हो गया भाई, मैंने कहा था आज हमारे लिसनर्स भी अगर अपनी रेसिपी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। और भाई यह ताज़ तरीन सूरत हाल। और अच्छा जी, इसके साथ हमारे पास एक और मैसेज भी आया है, अक्सर आजकल हमारी लिसनर बन चुकी हैं, कहती हैं आप ही नूडल्स जो हैं वो तो सभी के फेवरेट होते हैं, वो तो बहुत बनते हैं, लेकिन आज लंच में कोरमा है और शीरमाल के साथ। वाओ, कोरमे के साथ शीरमाल या ताफ्तान का एक इम्पोर्टेंट रोल है, जो जब इन दोनों चीजों को साथ देखें तो मूड खुद ब खुद बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ग्रेट हो चुका है। इसी के साथ हमारे पास एक और मैसेज आया है, कहते हैं बाजी मौसम के बारे में क्या कहती हैं, क्या गर्मी कम होगी? गर्मी बिल्कुल, गर्मी के हवाले से अगर बात की जाए तो मौसम के अच्छे रहने की पेशेंटगोई मौजूद थी 5 से लेकर 11 अक्टूबर तक। एंड इस वक्त भी कराची का दर्जा हरारत 32 है जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 34 है, विच इज क्वाइट फाइन। अक्टूबर के बनस्बत तो आई थिंक ये मौसम अच्छा है और फिलहाल अभी इस एक हफ्ते की तो प्रेडिक्शन अच्छी है। अब आगे क्या होता है इसके लिए हमें करना होगा आगे का इंतजार। चलते हैं अहमद जहांजेब की आवाज की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. कॉल नाउ एट 03111117837.
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
4: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
7: FM 100. लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.
9: Across the nation, there is only 100 FM.

0: FM 100's time check. FM 100's time check.
1: FM 100.

परफेक्ट हम सब कहीं ना कहीं एसोसिएट होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुंजाइश रह जाती है और उस गुंजाइश को पूरा करने में जिंदगी बहुत सारे चांसेस देती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रेंड, कुछ ऐसे फैशन की जो बड़े वियर्ड से होते हैं। आप हजार उनको बेहतर करने की कोशिश करें लेकिन वो लग भी वियर्ड रहे होते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि ट्रेंड होता है, फैशन होता है, तो वो समहाउ एक शायद डिजाइनर को भी अपना चीजों को वैरायटी ऑप्शन और इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना होता है। तो इसलिए कुछ ट्रेंड्स, कुछ फैशन, कुछ ड्रेसेस, कुछ डिजाइन, कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ वेरिएशन ऐसी हो जाती है जो कि बड़ी वियर्ड सी होती है। इसी तरह से पिछले दिनों बहुत सारी चीजें हम ऐसी देख रहे थे क्योंकि अब इंटरनेट का दौर है, वायरल दौर है और हर चीज फिंगरटिप पे होती है। हर चीज को आप फौरन जज करके, फौरन कमेंट करके, फौरन बता देते हैं। जरा सा टाइम नहीं होता, मतलब स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता और जहां गुंजाइश रह जाती है वहां आप मिनटों में उस चीज को स्प्रेड आउट कर देते हैं। तो इंडस्ट्री जो है वो फैशन की बड़ी अब बहुत ही वास्ट हो चुकी है, बहुत फैल चुकी है। ट्रैवलिंग बहुत है लोगों की और अगर ट्रैवलिंग नहीं भी है तो बहुत सारी चीजें थ्रू टू इंटरनेट जो है वो दिख रही है, मिल रही है। कहाँ के ड्रेस कहाँ होते हैं वो वाली चीज ही नहीं है जिसे आप कह सकें कि भाई पता नहीं, हमें तो पता नहीं है वहां क्या होता है, क्योंकि हम सबके कल्चर को बहुत अच्छी तरह से अब जानने लगे, इंडोल्स करने लगे। पहले होता ये था कि जो आप सुनते थे, शाहजहां नादर कभी आप किसी को देख लेते थे मैगजीन के थ्रू, पेपर्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, तो बहुत कम कल्चर जो है वो एक्सचेंज होता था। लेकिन अब जो है वो क्योंकि इंटरनेट का दौर है और कल्चर जो है वो बड़ा एक दूसरे को दिख रहा होता है, मिल रहा होता है, सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, तो फैशन वहां से भी ट्रेवल करता है। फैशन किस तरह, कैसे, कब, क्या उसको, क्या उसकी क्रिएशन होनी चाहिए, कौन सी चीज है जो आके ट्रेवल करते करते, माइग्रेट करते करते हमारे कल्चर में आ गई है, और कौन सी चीजें जो हमारे कल्चर की दूसरी जगहों पे पसंद की जाती है,

सुनाओ। आपका

0: your location for maximum music.
1: It's 5 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.9% 100 FM
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: FM 100 ट्रैफिक अपडेट।
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, FM 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूँ फारूक हज़ार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। वो तमाम ट्रैफिक जो इस वक्त सिंगल चौरंगी से जा रहा है भूख चौरंगी की जानब, उस पर ट्रैफिक का दबाव है, जबकि सिंगल चौरंगी से वो ट्रैफिक जो इस वक्त मनीर रिवर ब्रिज और वहाँ चारैसल कॉलोनी नंबर 2 की जानब आ रहा है, उस पर भी ट्रैफिक का दबाव है। लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिल पहुंच सके। मदद कर रहे पहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 साथ।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: your location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by
4: Tabal Family Mixture Line, Umrah par jaye,
2: and HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: And
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

तो दुनिया से बेखबर जो कहना था कहने दे आंसू ये बहने दे यार बोले दे खबर बोल खोल दे हम जान भी दे देंगे तेरे कहने पे वक्त पुराना हो बेसबर मेरे लफ्ज़ तुझ पे कर्ज़ है।

तरफ मची खलबली, इन्हें लगा कहानी मेरी सिर्फ दर्द भरी, हासिल मुझे बर्तरी होने लगी हड़बड़ी, खुद की कमाई पहनी घड़ी वो भी बर्बरी, अभी मशहूर नहीं लेकिन चली लग बड़ी, आके मेरे पैर पड़ी जिंदगी थी सैर बड़ी, सीखे हम गिर के चाहिए सबके खैर बड़ी, गहरे समंदर हम लेके चले लहर बड़ी, हम मर्दे मुजाहिद हैं हिप हॉप।

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai
2: aaram 11.99%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99% 100 FM
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
1: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
0: ये बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
1: इन्वेस्ट पार्क?
2: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
1: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
3: This program is brought to you by
4: Dabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye,
3: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

थोड़ी तो कमी कर, खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, फिर वही बहार की कमी बस, किस्मत हमारे ही हाथ में है, उसे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे, जख्म तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है, झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे बच्चे ही दुआ है, कभी कभी आए सोच जो हुआ वो ठीक ही हुआ है, सबसे सबक जो मिले हैं, सबसे अब मेरी सुला है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
4: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
6: 11.99% 100 FM
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: 100 FM
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: 100 FM
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: टबाल फैमिली मिक्सचर, लाएं उमराह पर जाएं
7: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने आप लाखों से तीन बार मौत देखा।
2: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सत्यभाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचें। ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुन या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
7: FM 24/7 365. FM 24/7 365.
8: Back to back, back to back. Only music, no art talk.
9: Only music, no art talk.
8: This is FM.

0: AM. The Soundcheck is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99% 100 FM
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
5: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बाल फैमिली मिक्सचर लाइन, उमराह पर जाएं
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
2: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by
3: AGS Tubular Battery hai to, dil ko hai aaram.
4: 11.9%, 11.9%.
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
6: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99%।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
11: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
12: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का

0: नो पानी नो परेशानी।
1: खैर तो है, जल्दी में कहाँ जा रही हो?
2: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
1: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
2: इन्वेस्ट पार्क?
3: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
2: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
4: किसने कहा था पैसे बचा?

0: का पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
1: This program is brought to you by Dabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye, and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. 11.9% 11.9%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99% 100 FM।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: 100 FM।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: 100 FM।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: टबाल फैमिली मिक्सचर, लाएं उमराह पर जाएं।
5: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: music of your choice. 100 FM. 100 FM.
1: It's 7 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL. This program was brought to you by
2: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye.
1: And HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL.
3: And Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
4: 11.9%, 11.9%.
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%. 100 FM. HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: This program is brought to you by
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
2: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
4: एंड
5: AGS ट्यूबुलर बैटरी है तो दिल को है आराम।
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
7: FM247365
8: Let's celebrate
9: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
11: Some are born to lead. Welcome to FM 100.

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by AGS Tubular Battery hai to dil to hai aaram. This program was brought to you by AGS Tubular Battery hai to dil to hai aaram.
1: 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99% 100 FM
5: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111872725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: में है 100 तोला गोल्ड। बस पॉकेट को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
1: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
3: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
4: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100, like us on facebook.com/FM247365।
7: Some are born to lead. Welcome to FM 100.

0: भी बैटरी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
2: किसने कहा था पैसे बचा?

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाए। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: ग्यारह अशारिया नौ फीसद।
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99%।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: 100 FM।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: This program is brought to you by
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
9: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
11: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
10: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
12: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
13: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
10: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
12: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
13: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
12: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
10: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
13: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
10: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
14: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Evening Drive Time.

0: 6:08 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
1: Naya Pond's body lotion, jisme hai 100 tola gold. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
3: FM 24/7 365. FM 100.
4: 31 saal FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum Pakistan.
3: Assalamu alaikum Pakistan. Pakistan.
5: We're sizzling in the summer sunshine. The best music. The best music.
3: FM 100.
5: Search, chill. Hot weather, hot music, hot DJ. 100.

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: Naya Pond's Body Lotion jisme hai 100 tola gold. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: This program is brought to you by
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. करीबी एचपी और ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: FM247365 This public service message is brought to you by FM100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.
4: Hip-hop.
5: No.
4: No alternative.
5: Uh-uh.
4: Just the best country mix on the radio.
0: FM 100.

very good evening to you, Saba. After a very long time, you came on the show late. But thank you so much. पिछले दो तीन दिन पहले मैंने आपको पूरा शो डेडिकेट किया था सब, अगर आप सुन नहीं रही थी उस दिन मेरे ख्याल से।

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This program is brought to you by
2: Purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए.

जनाब हेलो हेलो माइक चेक, कैसे मिजाज, कैसी तबीयत, उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे, सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो चैनल एफएम 100 और हमेशा आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है 9 to 11, ये टाइम जो है ना वो आप लोगों के साथ गुजरता है और बड़ा मजे का गुजरता है। तबीयत थोड़ी थोड़ी लोगों की बड़ी डाउन और भाई भी जरा सा कोशिश करता रहता हूँ जरा एनर्जी आ जाए, लेकिन जहाँ आके जब मैं बैठता हूँ शो स्टार्ट करता हूँ तब आती। तो दोस्तों सुन रहे हैं एफएम 100 और दिल चाह रहा है मैसेज करने का तो के अच्छा स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड कर देंगे 36365। ट्यूजडे का दिन यकीनन अच्छा गुजरा होगा, जिनका बुरा भी गुजरा है कोई बात नहीं यार, अच्छे बुरे दिन होते रहते हैं। दुआ करें कल का दिन जो है वो अच्छा हो। अच्छा जनाब ड्राइव कर रहे हैं इत्मीनान सुकून आ रहे हैं तो वेलकम, जा रहे हैं तो खैरियत से जाएं। जिन जिन लोगों की आज बर्थडे है हैप्पी बर्थडे। अच्छा जनाब मैसेज कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, बार बार बताता रहूंगा ताकि टिका के मैसेज आए। इसके अलावा मैसेंजर पे भी आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे भी मेरे दोस्त जो है वो अक्सर मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। अच्छा जनाब आज क्यू शीट जरा नए गाने भी हैं मिक्स्ड ट्रैक, उम्मीद करता हूँ मजे आएंगे। हमेशा की तरह आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, गाने पसंद करते हैं, तो आगाज करते हैं इस खूबसूरत से कलाम से।

रहे हैं जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर भी। और जनाब फरीन शहजादी कह रही है अस्सलाम वालेकुम, द मोस्ट फेवरेट और ग्रेट पर्सनालिटी लेजेंड आज। अरे सरकार, इतनी फरीन शहजादी तारीफ कर देती हो, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा तमाम सुनने वालों को भी सलाम दुआ। और कह रही है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई जी। घड़ियां तो खत्म हो रही हैं लेकिन इंतजार जो है वो रहता ही है कहीं ना कहीं। कितनी गहरी बात कर दी मैंने छोटे से मुंह से, ये एक फैक्ट है वैसे। अच्छा जी, नौरीन तौसीफ कह रही है अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, मिजाज शरीफ कैसे? बस थोड़ा जरा गले में जरा मसला रह रहा है, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान शुक्र है। अच्छा जनाब, इसके अलावा तानिया जी हमें सुन रही हैं, थोड़ी सी तबीयत उनकी भी ना सर। तानिया जी अपना ख्याल रखा करें आप। अच्छा जी, और संजू आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम भी कर रही हैं। और इसके अलावा यानी कि अल्लाह पाक दिलों को सुकून दे, आमीन, बड़ी जबरदस्त दुआ दिया आपने से। जिंदगी में बरकत और हर कदम पर अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल मिजाज मेरे बिल्कुल ठीक है। अब मैं आ गया हूँ यहाँ तो जरा आप लोगों से गपशप करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा जी, और सॉन्ग पसंद आ रहा है। और इसके अलावा कह रही ये हकीकत है, इंतजार तो रहता है, बड़ी बात है वैसे सोचे तो। अच्छा जनाब, इसके अलावा सलाम कैसे हैं सबको? सलाम जरी नूर, वालेकुम अस्सलाम। राइट जनाब, नेक्स्ट ट्रैक के जाने

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं. जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं. हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
5: Active.
6: Yummy.
5: Adorable.
6: Seven.
5: Say I've got a crush on you.
6: Yeah, but I'm still sunoya.

0: mud.
1: वेलकम बैक। और नजर से जब नजर मिले, अच्छा सॉन्ग है संजीदा जी, बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ कर दी गाने की। और इसके अलावा सलाम भाई लोग और सब भाई लोगों को भी सलाम भाई, कोई अच्छा बलूची गाना सुना दो। बासद सुभानी मलीर कैंट से, बासद भाई क्या हाल है आपके, ठीक है खैरियत से यार? बलूची गाना, अच्छा आपने ऐसा जिक्र किया यार, मुझे भी वैसे पसंद है, मैं ढूंढता हूँ कोई अच्छा सा गाना आपके लिए बलूची, थोड़ा सा इंतजार करें। तानिया जी कह रही मुझे बस आराम से आपको सुन, कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं, मगर मैं क्या करूं, इतने प्यार से इतने मोहब्बत से आप जब शो सुन रही हो तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं कह देता हूँ, कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ। ओए ओए क्या कहने, खुश रहिए आप और बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा जनाब फरीन शहजादी कह रही है आपके शो से हमें एनर्जी की ड्रिप लग जाती, फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कोई ग्लूकोज की लगवा के बैठ जाऊं, अजीब तबीयत हो जाती है इस मौसम में। अच्छा भाई हमारे दो प्यारे से इंजीनियर जो हैं वो मुझे सामने नजर आ रहे हैं, नदीम अंसारी भाई हमेशा की तरह और सत्तार दी ग्रेट, टेक्निकल हेड हमारे उस्मान भाई भी आए। तो बहरहाल मैं जिक्र कर रहा था कि मौसम ऐसे हैं, इसमें ये होती रहती चीजें। और भाई बिल्कुल आप जब सुन रहे हो हमारा शो तो बिल्कुल मैसेज करें, पता चले भाई कौन कौन लोग सुन रहे हैं और उनका जिक्र तो मस्ट है ना। अच्छा कुछ लोग गुप्त होते हैं, खामोश होकर सुन रहे हैं और इस इंतजार में शायद मेरा नाम ले ले, शायद मुझे याद किया हो। तो कौन है भाई तू, पहले आपसे बंदा पूछे भाई तू है कौन, क्यों याद करे भाई तुम्हें। अरे इसी बात पे थोड़ा एनर्जी वाला सॉन्ग हो जाए,

आप हैं जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 3636 पर। अच्छा जी, लबीना जी, मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ? कह रही है नेवल कॉलोनी से, और नेवल कॉलोनी बल्दिया टाउन, किस तरह का इलाका है ये? नेवल कॉलोनी भी आ गई, बल्दिया टाउन भी आ गया, कराची। दुआ कीजिएगा भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। किस बात की दुआ? इम्तिहान में पास होना है, क्या हो गया तुम्हें? तबीयत खराब है, किस चीज की दुआ है? घर के हालात ठीक नहीं है, उसकी दुआ? किस चीज की दुआ है भाई, ये नहीं बताया। अच्छा जी, मिस्टर फारूक आ गई, कैसे मिजाज है? ठीक है, खैरियत से, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, सदा खुश रहे। अरे आप भी सदा खुश रहे, और इतने प्यार से मैसेज जो कर देती ना, प्लस एनर्जी आ जाती है। यासुद्दीन बलबन मुल्तान से हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, पूरी टीम को सलाम, सब सुनने वालों को सलाम, वालेकुम सलाम। गयास भाई, गयास कराची कब आ रहे हो? अच्छा जी, इसके अलावा संजू क्या कह रही, जो लोग ऐसा सोचते हैं अयाज नाम ले तो उनको मान होता है, आज शो में नहीं तो कमी महसूस होगी। पता नहीं किस फहमी, खुश फहमी का इलाज नहीं है भाई, बोला करे यार, सब आके यहाँ बोले अच्छे तरीके से, इधर कोई भी हीरो नहीं, सब इक्वल है, सारे बराबर है। अच्छा जी, मेरी अपनी तरफ से गलत फहमी भी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, सब यार सब बराबर होने चाहिए, कोई जो है ना वो स्पेशल ट्रीटमेंट किसी के लिए नहीं हो। अच्छा, मेरे एक दोस्त ने मलीर कैंट से, किसने भाई, बासत सुबहानी भाई ने एक मैसेज किया था कि बलोची गाना हो जाए, तो बड़े दिनों बाद इस ट्रैक को शामिल करते हैं, तो बासत भाई आप ही को डेडिकेट करता हूँ।

0: जनाब
1: वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 109.37 टाइम स्पीड के साथ गुजरा और जनाब मैसेज आ गए हैं। इमरान भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा, इमरान भाई का नाम मैंने पढ़ा, मुझे इमरान रियाज याद आ गए हैं जो हमें कॉल करते थे। बड़ा दिन हो गए हैं वैसे, कॉलर्स को मैं मिस करता हूँ। ये आज मैं आपको ऑन एयर बता दूं, अक्सर लोग बोलेंगे भाई फोन बंद हो गया तो ये हमें भी भूल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ही कॉल्स का सिलसिला ठीक होता है तो बस आप लोगों से गपशप करेंगे। अच्छा जी, गाना की डेडिकेशन आ गई है सत्तार भाई की तरफ से। वाह वाह वाह, तानिया हसन आपके लिए जबरदस्त सा गाना। कह रहे कोई भी अच्छा सा गाना जो है ना तानिया हसन को डेडिकेट। तानिया जी भी छाई हुई है वैसे। अच्छा जनाब, और मैसेज कर दिया है किसने? मधिया जी क्या हाल है आपके? ठीक है, बहुत तारीफें कर दी, बोलने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मैं असल में आज तबीयत ना बहुत ज्यादा वो वाली है, इंसान एक तकिया लेके ना ऐसे बैठ जाए कोने में सुकून से, ये लेजी पना हो जाता है इस मौसम में। अच्छा जनाब, इसके अलावा अयाज भाई जबरदस्त गाना लगाया, दिल के साथ किडनी भी खुश कर दी। वासिद भाई बस आप खुश हो गए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं भाई जनाब। तो तानिया जी को गाना डेडिकेट कर देते हैं, और वो है कैसे भाई, ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है जैनुल आबिदीन, इनका जो है वो नाम है, और ये गाना ऑल टाइम फेवरेट है मेरा।

वाह जी, वेलकम बैक। और क्या खूबसूरत ये ट्रैक भी बना दिया ना जैन भाई, छा गए। वैसे भी इनकी आवाज, इनका तो मैं वैसे ही मैं फैन हूँ, बहुत ही जबरदस्त। ये नहीं कि वो आरजे वाली आवाज, गाने में भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। तो इनके लिए तो हमेशा दुआएं होती कि ये हिट बल्कि सुपर हिट हो। अच्छा जनाब, और तानिया जी थैंक्स कहिए, सितार भाई का भी और हमारा भी बहुत शुक्रिया। तानिया जी खुश रहे आप, और इसके अलावा क्या बात है, जबरदस्त। मेरी तरफ से भी तानिया को ये सॉन्ग प्लीज, थैंक्स। बिल्कुल जनाब, आपकी तरफ से भी, मिस्टर फारूक की तरफ से भी ये गाना जो है ना आपके लिए। अच्छा जनाब, टाइम जो है ना वो यार, ये एफएम पे क्यों इतना स्पीड से टाइम गुजरता है।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए।
4: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है, तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी ज़हमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाए, शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है, तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बर वक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।

0: 24/7/365. FM 24/7/365.
1: Active.
2: Yummy.
1: Adorable. Zabardast. I've got a crush on you.
3: भाई जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं 3636 पर। इफ्तखार भाई क्या कह रहे हैं, इफ्तखार अंसारी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम याद भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का काफी शुक्र है, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है। और कह रहे हैं कि आज तो न्यू सॉन्ग प्ले होंगे, मैं 90s सुनता हूं बस भाई, हालात की वजह से कान बर्दाश्त नहीं करते। मैं कह रहा हूं इफ्तखार भाई कोई सरसों का तेल कानों में डलवा लें या कुछ ऐसा करें कि कान जरा सही हो जाए, इंशाल्लाह आपको नए गाने भी पसंद आएंगे। इफ्तखार भाई आप मौका तो दें नए गानों को, देखा गला खराब हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद यू करना पड़ता। तो इफ्तखार भाई वो बात है वो सही है, तो मौका दें नए गाने भी सुनने की कोशिश करें आप। अच्छा जी थैंक्स कह रही है तानिया जी, कह रही बहुत शुक्रिया मिसेस फारूक का, मिसेस फारूक बहुत आपका शुक्रिया भैया। और इसके अलावा मैसेज, अच्छा भाई इफ्तखार भाई के लिए ना मैंने जरा एक ये थोड़ा सा गाना मैं आपको सुनाता हूं, पूरा नहीं सुनाऊंगा थोड़ा सा, इफ्तखार भाई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin.
1: FM 100, where the vibes are proud.
2: FM 100's time check. It's 10 p.m.
3: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
4: facebook.com/fm247365
5: FM 100.
2: 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.
6: Active. Yummy. Adorable. Seven.
7: Say I've got a crush on you.
6: ये प्यार तो सुनो यार.

और जना वेलकम बैक सुन रहे FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी. अस्सलाम वालेकुम. गुड अरबिक सॉन्ग. बड़ी मेहरबानी. कौन है भाई? नाम तो लिखो. तो भी फरमाशें मुस्तकिल आ रही हैं और हमजा हमें मैसेज कर रहे हैं, ऑसम शो डियर अयाज, और बहुत सारी तारीफें करनी है. हमजा थैंक्स अ लॉट ब्रदर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. ऑसम ऑसम ऑसम स्टार्ट से अभी तक ये सारे सॉन्ग आ रहे हैं. मिस्टर फारूक बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और फरीन शहजादी क्या बात है. अच्छा तस्वीरें भेजें खाने पीने की सारी. ऐसा नहीं करो यार, तबीयत सही नहीं होती तो मेरा खाने को भी दिल नहीं करता किसी. वैसे ये बड़ा चीज है कि अगर आपकी तबीयत नासाज हो कुछ खाने को दिल नहीं करता. यही सूरत हाल है मेरी भी. अच्छा इसके अलावा जनाब अमरीन हमें मैसेज कर रही है, कह रही है बहुत अच्छा म्यूजिक, कुछ स्लो ट्रैक मेरे नाम कर दीजिए. ठीक हो गया जनाब. अच्छा वैसे इतने फास्ट मैंने गाने आपको सुनाए, मेरा भी दिल करा एक जरा कोई शायरी वाला अच्छा सा ट्रैक वो भी मैं आपको सुनाऊं. तो जरा चेक करें इस गाने को और मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको.

जनाब वेलकम बैक टू FM 100। क्या गाना है यार, क्या शायरी है, जबरदस्त यार। तो बहरहाल जी, गयासुद्दीन बलबन को भी पसंद है। बहुत दुखी आत्मा लग रही है गयास भाई, क्या चक्कर है? यार नाइस प्लेलिस्ट, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मिस्टर फारूक आपका भी शुक्रिया गाने पसंद करने का। और इसके अलावा संजू आ गया, आंखों के पास तेरी हस्ती तस्वीर, वाह वाह वाह वाह, शुक्र मेरे मतलब का सॉन्ग प्ले हुए। मिक्स है आज क्यूशन, मैं आपको बता दूं एक और बड़ा दुखी गाना, थोड़ी सी देर में, अभी नहीं, थोड़ी सी देर में प्ले करता हूं। फिलहाल तो जरा वापस माहौल को करते हैं रंगीन।

वहीं जरा सुन रहे हैं 100 आयाज अहमद के साथ और मैसेजेस कर रखे हैं चार्ज पे टेक्स करेंगे सेंड कर देंगे 3636 पर। अच्छा जी संजय जी कह रही है कि शायद ये जबरदस्ती दुखी सॉन्ग नहीं था, मैंने इस गाने की बात नहीं की थी जो थोड़ी देर पहले प्ले किया, जो मैं करूंगा वो दुखी गाना। संजू कहां है दिमाग तुम्हारा, और कह रही साथ हूं कहीं गई नहीं, और जैन का सॉन्ग तो जब सुनो अच्छा लगता है जबरदस्त। ओए हो तला भाई क्या कहने, इतनी तारीफें कर दी। अयाज भाई, अयाज भाई सफर अच्छा कर दिया। अच्छा सफर कौन सा वाला, उर्दू वाला अंग्रेजी वाला? अगर आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो भाई म्यूजिक जरा ऊपर ही कर लो। जबरदस्त एडविड माया स्टूडियो लव, क्या ट्रैक तैयार है। अच्छा जनाब इस गाने के बाद ये गाना भी मुझे याद आ गया अचानक।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीन। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365
4: active yummy adorable zabardast
5: ye pyaas to suno yaar

हाय जनाब, वेलकम बैक सुन रहे FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं 3636 पर। और अल्लाह भाई कह रहे हैं कि अयाज भाई क्रिकेट के हवाले से भी कुछ बताएं। सर भाई क्रिकेट से बस मेरा दिल खराब हो रहा है यार। अच्छा खेल रहे हैं लेकिन पता नहीं इंडिया से जब से हारने लग गया ना बस मेरा दिल उठ गया क्रिकेट से। लेकिन हो सकता है नए खिलाड़ियों को शामिल करें, जरा उनके हौसले बुलंद हो तो वो अच्छा करते। तो क्रिकेट को जरा साइड पे कर दें, हॉकी भी साइड पे हो गया, स्क्वाश भी साइड पे, क्या हो रहा है पूरा मुल्क साइड पे हो रहा है, आवाम भी साइड पे हो गई है, पूरी आवाम साइड पे हो गई। इतनी महंगाई, रोज पेट्रोल बढ़ रहा है, कितने जाइए, मैंने 100 तो सही। गवर्नमेंट वाले लोगों से कहूंगा यार खुदा का खौफ करो यार, खुद ही पैसे अकेले अकेले बनाए जा रहे हो, आम आदमी का भी ख्याल कर लो। बस इस मौके पे अल्लाह को याद करने को दिल करता है हर वक्त मुझे, मैं क्या करूं।

हमारे जनाब सुन रहे एफएम 100 और क्या ही ये ट्रैक है, और साथ साथ संजू जी भी मैसेज कर रही हैं। संजू जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कवाली भी पसंद आ रही है, गाने भी पसंद आ रहे हैं।

हाय हाय डांस करने का दिल कर रहा है वैसे। जावेद जी उठिया, मैं क्या कौन है ये, दसो तो सही कौन है ये। बस इतना मैसेज आया। सबा कह रही है फ्रॉम कराची, आरजे आयाज, आई लाइक योर शो, सॉन्ग्स आर बेस्ट, शो इज वेरी नाइस, थैंक्स, मोस्ट वेलकम सबा जी। इकबाल कह रहे हैं आयाज भाई आप खुद पीएम साहब की कुर्सी पर बैठ जाओ और दूध की नहरें चला दो। अबे ये कौम जब तक नहीं बैठेगी ना उस कुर्सी पर तब तक दूध की नहरें, दूध में ही पानी डाल देंगे। इकबाल भाई असल में जहर ही ऐसा है ना, कौम जब तक खुद जो है ना उठेगी नहीं तो काम नहीं होने वाला, तो फिर हमारे साथ जो हो रहा है शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इकबाल भाई कुछ जरा खौफ करो कि इतनी जो है ना आम आदमी इतना परेशान घूम रहा है, उनका कोई ख्याल करो। बस तो बचपन से इकबाल भाई ने सोचा हुआ है कि ये लोग अच्छे हैं, बस मुझे लग रहा है फांसी पे भी चढ़ रहा होगा तो भी अगर लोग सही है यार, मेरे से गलती हुई है। इकबाल भाई ऐसे नहीं करो यार, गरीबों का ख्याल रखो। अच्छा जनाब, संजू कह रही है क्या सॉन्ग है और मजा आ गया, दिलबर मेरी जाने जा तेरी खुशबू, भाई शायरी भी लिखी हुई इन्होंने भाई, दिल चाह रहा है ये सॉन्ग खत्म ही ना हो। खत्म तो होगा सर, खत्म तो होना है, जो चीज आई है उसने खत्म भी होना है। फिर आज मैंने गहरी बात कर दी भाई, और मिस्टर फारूक बहुत शुक्रिया, इतना जो आप अप्रिशिएट करती है ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी ये वाला जब मैंने ट्रैक रखा हुआ, ये माहौल मैंने रखा हुआ तो उसी को कंटिन्यू रखूं या थोड़ा बीच में जरा दुखी गाना भी ले हूं क्या, जैसा आप कहें। यार ये एक म्यूजिक है, ये भी मैं आपको चेक कराता हूं, चेक करें जरा। हाय हाय सोच रहा हूं बैकग्राउंड इसको रख लूं।

हाय हाय हाय। अच्छा तानिया जी जो है ना, दुनिया की मसरूफ तरीन खातून में से एक है। अचानक कॉल आ जाती है। तानिया तुम का स्मगलर हो, कौन हो तुम, हमें बताओ तो। हर थोड़ी देर बाद कॉल आ जाती है। हाय हाय, फुल माहौल बना हुआ है।

वाह वाह। अच्छा जनाब, आजकल ये गाना बड़ा हिट हुआ है भाई पंजाबी, जरा ये जरा चेक करें, बहुत जो है ना इसकी रीच भी बढ़ रही है, पाकिस्तानी गाना है, थोड़ा सा सुना।

0: पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: जनाब सुन रहे हैं आप यहाँ से अहमद कैफ़े 100 पर और साथ साथ मैसेज भी कर रहे हैं 3636 पर। अच्छा जी, हमें सुन रही हैं तानिया जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। संजू आपका शुक्रिया, मुझे लग रहा है दो लोग सुन रहे हैं और मिस्टर फारूक भी हैं साथ साथ भाई। बाकी लोग भी हमें मैसेज करें बताएं। और तानिया जी से तो मैं कहूंगा बहुत स्वीट है आप, बस इसी तरह सुनते रहे, अप्रिशिएट करते रहे और एंजॉय करते रहे।

चिक्को, हम पंजाबी वाला कह रहे हैं चिक्को। जमान में की बड़ी बात है, अंग्रेजी में कुछ और है, पंजाबी में कुछ और, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है वैसे, लेकिन हम तो पंजाबी वाला कहेंगे चिक्को। जैसे हम प्रोग्राम चिक्की जा रहे हैं, असगर साहब की कॉल आ गई। असगर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, आपको हौसला और प्यार रहा। अरे मैं भी सुन रहा हूँ यार, गयासुद्दीन बलबन भी आ गए हैं। और वो क्या कह रहे हैं, एक मिनट जरा मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लूँ। अच्छा चल जरा गयास भाई, मुझे उम्मीद थी आपसे यही उम्मीद थी, पूरे उतरे हैं, बिल्कुल पूरे उतरे हैं। और संजू जी आप भी शरारती होगी वैसे, ये बात मानने वाली है। चिक्को जनाब, हम भी टाइम जो है ना चिक्की जा रहे हैं, और वाकई में सीरियसली मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। अच्छा जनाब, अब एक गाना जो है ना, वो तानिया जी क्योंकि बड़ी देर से सुन रही हैं चुपचाप, कभी वो फोन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो लेकिन इस दफा जो है ना वो कह रही है मैं आराम से सुकून से सुन रही हूँ, तो ये वाला आज गाना मैं इनको पूरा सुनाता हूँ, और इनका बड़ा फेवरेट गाना, इन्हीं को डेडिकेट कर देता हूँ।

हाय, क्या बात है जनाब, पुराने वक्तों के गाने लेकिन जरा नए स्टाइल से। समी मेरी वार, वाह वाह वाह। और इसके अलावा मिस्टर फारूक कैरी मुझे भी बहुत पसंद है। और इसके अलावा तानिया जी क्या कह रही, तानिया जी कह रही है कि भाई वजह तो पूछे क्यों पसंद है। भाई वाकई में यादें होती हैं गानों के साथ, और यकीनन आपकी यादें होंगी, इस वजह से भी अच्छा लगता है। और इसके अलावा ब्यूटीफुल सॉन्ग, जावे तेरे नाल मैं नहीं बोलना, हाँ हाँ सलामत रहे। नाम नहीं लिख रहा कोई, नाम नहीं लिख रहा। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, यूसुफ पापोर से, यूसुफ भाई भी आ गए भाई, ये भी हमें सुन रहे। और संजू जी क्या कहने, बस हस्ती मुस्कुराती रहे, आप खुश रहें। रंजनाम नेक्स्ट ट्रैक की जाने, और वो है कैसे है?

हैं जनाब, सुन रहे FM 100। सला जी क्या बात है, कह रहे हैं पाकिस्तान के सारे पहाड़ सोने के बन जाएं और दरियाओं में पानी की जगह पेट्रोल बहने लग जाए, ये मुल्क फिर भी मकरूज ही रहेगा क्योंकि ऊपर चोर डाकू मुसल्लत। इकबाल भाई सुन लिया, क्या खूबसूरत तला भाई ने जवाब दे दिया, यही कहना चाह रहा था, यही कहना चाह रहा था। और मिस्टर फारूक आपने इतनी दुआएं आज मुझे दे दी है ना, सो स्वीट ऑफ यू। सारे ट्रैक्स इनको पसंद आ रहे हैं। फिर आ गई है संजू, कहने समझ गया, फिर संजू नहीं समझने गाने, बिल्कुल गाने को नहीं समझना तुम्हें, इंजॉय करने कुछ गाने, इसमें समझने वाली कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ म्यूजिक है। हाय हाय हाय, समझ मुझे भी नहीं आ रहा लेकिन है मजे का।

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकें। आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहिद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। एएनएफ का साथ दे मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 247 365
3: Active, yummy, adorable, zabardast. Ye pyaar to suno yaar.

जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस आप कर रहे हैं। अच्छा जनाब, वाकी जावे हर जाई रुला दिया। क्यों रो रहे हो यार, क्यों रो रहे हो? हालांकि अच्छे गाने भी सारे मैंने फास्ट फास्ट भी ट्रैक सुना है ताकि थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लो तुम लोग, लेकिन नहीं, दुखी हो जाते हो फौरन। जरी नूर कह रही, नाइस सॉन्ग, आपका शो बहुत अच्छा है, मेरी तबीयत ठीक होगी। चलो बेटा, फीस लाओ, डॉक्टर की फीस लाओ फटाफट। इकबाल कह रहे हैं कि अवाम खुद चोर है, पहले तुम खुद तो ठीक करो। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही अर्ज करो, अवाम में हम सब आते हैं। इकबाल भाई, आप भी अवाम के अंदर शामिल हो। आपने सही कहा, आपने आपको भी आपने चोर कहा, हमें भी चोर कहा, सबको चोर कह दिया। लेकिन एक बात बताऊं, ये हकीकत भी है। जहां मौका मिल रहा है, हर आदमी अपना जो है ना करप्शन कर रहा है, बस किसी को ज्यादा करप्शन का मौका मिल गया, किसी को कम। तो हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। बहुत अच्छी बात इकबाल भाई आपने की। जब तक दोस्तों हम अपने आप को सही नहीं करेंगे, मुल्क ने ठीक नहीं होना। बाकी आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इसी बात पे एक और दुखी गाना नजर आ रहा है, दोस्तों के लिए, खासतौर पर बेवफा दोस्तों के लिए। मिस्टर फारूक, बहुत शुक्रिया। संजू, आपका भी शुक्रिया, गाना इतना पसंद कर दिया संजू ने, क्या बात है।

0: やめ。
1: जनाब इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म, लेकिन सीरियसली आप लोगों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता दोस्तों। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग जरा उससे भी मैसेज कर रहे थे उनका भी शुक्रिया कि यार कम से कम वक्त निकालते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, मैसेज करते हैं, उनका भी थैंक्स। भाई जनाब इसके बाद आएंगे हमारे प्यारे से नदीम अख्तर और जबरदस्त शो करेंगे। भाई जी नेक्स्ट शो तक के लिए अयाज अहमद को दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, रब राका, खुदा फमाना।

0: FM 100's time check. It's 11 p.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
2: facebook.com/fm247365
3: 365.
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
6: This is your music.

अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक करेंगे खूब हल्ला दे गुल्ला। इस हल्ले गुल्ले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। ट्रैफिक सिग्नल की बात जारी करेंगे तो भी मेहरबानी होगी। शो में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में चाहिए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज है जी, तो उसको सेंड कर देना है किस पर, 3636 पर। और आज क्योंकि मंगल का दिन है, ओल्डी गोल्डी क्लासिक पाकिस्तानी मूवीज के पुराने और बहुत पुराने ट्रैक्स आपको सुनाएंगे। अभी तो आपने बड़े जबरदस्त ट्रैक सुने, हमारे अयाज भाई का शो था, जबरदस्त किस्म का, जबरदस्त मेहनत करता है यार शहजादा हमारे यार, एक से एक गाना लाकर आपको सुनाता है कि मजा ले। आप लोग कह रहे हो अयाज भाई क्या गाना चलाए, कह दिया करो कभी अयाज भाई जबरदस्त। ये हौसला अफजाई जो होती है ना, एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है। हो सकता है आप लोग करते भी हो, मैं एमिंग कह रहा हूँ हैं जी, मुझे नहीं कहा अभी तक। खैर जी, उन्होंने जो मोमेंटम बनाया हुआ था उसको कोशिश करेंगे कि वैसे ही लेकर चलें, लेकिन शो की नौयत बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर ओल्डी गोल्डी क्लासिक है। कोई ना कोई मैं सवाल फ्लोट करता हूँ, आप देते हैं उसका जवाब, मगर उससे पहले करता हूँ आप लोगों को वार्म अप, और वार्म अप करने के लिए गाना एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक सुने ये तेरा नाजुक बदन है या गई महगा गुलाब ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको आया होगा पसंद. मैसेजेस करेंगे आप 3636 पर और सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं है आपसे. सवाल अभी आपसे पूछते हैं. माशाल्लाह से मैसेजेस पहले से ही आना शुरू हो चुके थे. अच्छा भाई ख्वातीन के हवाले से आज सवाल करेंगे. दराज कद जो है वो हर इंसान को पसंद. यार कद दराज हो लंबा कद हो चाहे वो मर्द हो या औरत हो छोटे कद के पसंद नहीं करते ज्यादातर लोग. खैर ये तो अल्लाह के काम है लेकिन जो इंसान पसंद करता है वो यही होता है कि कद दराज हो. तो आज का सवाल भी इसी तरह का करेंगे हम आपसे. आपने ये बताना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दराज कद यानी कि लंबी ख्वातीन औरतें कौन से मुल्क में पाई जाती हैं. उनकी औसतन आपने हाइट बतानी है. औसतन समझते हैं आप. हाँ औसतन आपने बताना है कि कौन से मुल्क की ख्वातीन सबसे ज्यादा लंबी होती हैं. अब जुबान की बात नहीं करेंगे जनाब. वो हर मुल्क की औरत की जुबान लंबी होती है चाहे वो गोरी हो या काली. तो दराज कद के हवाले से बात हुई है वो आपने बताना है. तो हम बढ़ते हैं आगे आपके मैसेजेस की जानिब. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है. अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे बेरोजगार नौजवान जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब बड़ी नौकरी तेज दौलत बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं. जिनसे बदमनी खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें पहचान फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए क्योंकि हर लफ्ज हर क्लिक हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको. आपको पता ही है मेरा नाम है नदीम अख्तर. अब यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुने. तो सुने हो फौरन से बेशतर बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब. सबसे पहले फीता काटा है हमारे यूसुफ भाई ने बाबू से. तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है. एफएम 100 की तमाम फैमिली को भी आंटी को चाची को रूसा को गुलबानों को तमाम डॉक्टर्स को इमरान भाई को खिताब गुल्लाला को उफरान भाई को और मेरे वाले साहब को बहुत बहुत शुक्रिया. भाई यूसुफ भाई ये बताइए खुशी की बर्थडे कैसी मनाई गई है. अब तो 6 तारीख खत्म होने वाली है तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बर्थडे जरूर मनाई होगी. तो उस हवाले से बताइएगा और खुशी कितनी खुश थी ये भी बताइएगा. सलाम के बाद कह रहे हैं कि भाई नॉर्थ नाजमाबाद कराची से नसरीन बुरफत साइमा नूर बुरफत नूर जहान बुरफत शो इज वेरी वेरी नाइस. और अच्छा एक गाने की फरमाइश कर दी है सिंधी गाने की, वो आज नहीं चल सकता मेरी भाई। आपको पता ही है कि आज के शो में यानी कि समझ नहीं है ना, हाँ पाकिस्तानी मूवीज के गाने चलते हैं पुराने और बहुत पुराने। सनम मुल्तान वाली आ गई हैं और कहती हैं सबको मेरा सलाम नदीम भाई, शो बहुत अच्छा है। और एक गाने की फरमाइश कर दी उन्होंने, तो मेरी बहना आपकी फरमाइश नोट कर ली है, पूरी कोशिश होगी कि आज जरूर चले। हैं जी ते हैं जी, शहजादी बहना आ गई हैं जरीन नूर और कहती हैं सलाम कैसे हैं भैया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वाले साहब को, संजू को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। अख्तर साहब आए हैं सलाम के बाद, कह रहे हैं इन्हें भाई क्या हाल है, फर्स्ट टाइम मैसेज किया है। अख्तर साहब यार आप तो अपने ही है, हम नदीम अख्तर और आप अख्तर हैं जी ते हैं जी। तो बस आप हमारे दिल पे वैसे ही घर कर गए हैं अख्तर नाम से ही, तो आपको वेलकम कहेंगे अख्तर भाई। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सुनना चाहेंगे आप, जरूर बताइएगा। ओहो बड़े बड़े लोग आ गए भाई आज, अय्यूब अफरीदी साहब आ गए, कह रहे जय जिगर या हबीबी, नहीं लिखा आज उन्होंने आपको और गुल आपको एस गुल को, मुश को, एच गुल को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। इसको क्या हो गया भाई, हैं जी।

इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में जनाब आपको ले जाना पड़ेगा एक गाने की जानिब। तो बढ़ते हैं और अख्तर भाई के मैसेज के बाद अयूब लाला का हमने मैसेज पढ़ा, उसके बाद वाला मैसेज हम बाद में पढ़ लेंगे। तो बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। मेहनाज बेगम की आवाज, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे। तेरा मेरा कोई नाता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है। आई होप कि आपको ट्रैक पसंद आया होएगा। और हमारे मिर्जा शुजात साहब गुज्जर खान तो आगे ने कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई और तमाम सुनने वालों को भी मेरा आदाब। वाह वाह जबरदस्त, क्या कहने हैं, शानदार आगाज, शोला जवाब। आपके सवाल का जवाब नदीम भाई, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, क्योंकि मैंने कई खवातीन लंबे कद की देखी हैं ऑस्ट्रेलिया मुल्क की। बाकी आप तसल्ली बख्श जवाब देंगे, हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। लेकिन खैर, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने बताया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में खवातीन दराज खत की होती है। नहीं भाई, सतार भाई कह रहे हैं, नहीं भाई, वो कह रहे हैं दुनिया में सबसे लंबी खातून जो है, कहां, बताया बोले कोई बात नहीं, बोले कह रहे हैं अफ्रीका में होती, घर में नहीं होती। अच्छा भाई, हमारी प्यारी जी चाची ने भी जवाब दे दिया है, जो कि हम पोशीदा रखेंगे चाची का जवाब। जबरदस्त चाची, और आजकल कहां कहां घूम रहे हो चंदा? चाची कहां घूमना है, बस ऑफिस से घर, घर से एफएम और एफएम से फिर घर, कहीं नहीं जाता चाची मैं, वैसे हकीकत बता रहा हूं आपको, पता नहीं यार। हाँ हाँ चाची, पढ़ लिया हमने, गुड है, आपने सही बता दिया है, बस सही है। और हमारे अब्बास भाई भी आ गए हैं जनाब तारिक रोड वाले, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम अब्बास भाई, ओके टेक जा रहे हैं हम। और हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी आ चुके हैं, फरमाइशों पर फरमाइशें हो गई हैं भाई। कहते हैं कि पसंदीदा सॉन्ग आपको बता दिए हैं, उनमें से कोई गाना चला दीजिएगा, और उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, पसंदीदा सॉन्ग दूसरे मैसेज पे लिखकर सेंड कर दिए हैं। आपकी जात से मुझे नाचीज को कवी उम्मीद है, आप किसी सूरत मायूस नहीं करेंगे, पेशगी शुक्रिया। अयूब अफरीदी, नसीम कुरैशी, समी शेख, खिताबुल्ला, इमरान रियाज और वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम, हर लम्हा दुआ गो, नए ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, एफ बी रिया कराची से। अच्छा भाई, एक मैसेज आया है, इसमें अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सवाल का जवाब उन्होंने दिया है, और ये नाम आपका जो है ना वो नहीं है भैया, अपना नाम बताइए, नाम क्या है। मैं इनका नाम तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दे जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA सुनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और एक बजे तक ये उल्डी गुल्डी क्लासिक का हल्ला गुल्ला जारी हो सारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। अच्छा, कुछ थोड़ी सी तारीख ताखीर रहेगी एक दो लिंक्स में आपके जो 3636 पर भेजे हुए मैसेजेस हैं, तो आपने परेशान नहीं होना कि मैसेज अभी तक रीड क्यों नहीं किए गए, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ, मिर्जा साहब कहने पे ने, अरे वाह वाह क्या मीठा सॉन्ग, ठंडी रात में दिलकश, दिल में सरूर जगाने वाला सॉन्ग, जियो जी। मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चाची आप बिल्कुल दुरुस्त बताती हैं, फिर चाची जब बता देती है ना जवाब, फिर उसके बाद उसकी तमाम डिटेल भी बता रही होती हैं, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात। तो चाची ये तमाम डिटेल जितनी भी आपने बताई है ओके ठीक है, जबरदस्त। मलका तरन्नुम नूरजहान की आवाज में गाना सुना दीजिएगा, ये कह रहे हैं हमारे अब्बास भाई, और चाची को उन्होंने सलाम कहा है दिल की गहराइयों से। चाची जो है हमारी, उन्होंने भी ट्रैक डेडिकेट करना है, उनकी प्यारी सी दोस्त अजरा शब्बीर सुन रही है, और अजरा जी को तो आज का शो वैसे ही बड़ा पसंद है हमें पता है, हम बिल्कुल उनको ट्रैक डेडिकेट करेंगे 100% करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। और इसी बात पर हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब।

0: नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365

वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको। तो जनाब आपके 3636 के मैसेजेस अब मेरे सामने आना शुरू हो चुके हैं, उनकी जाने बढ़ते हैं। लास्ट मैसेज हमने इसमें पढ़ा था युब लाला का, और हमने युब लाला की जन से गन अभी डेथ इकट कर दिया, और वो कहते हैं कि एस गुल मुश्क को और एच गुल को एक सॉन्ग अगर हो जाए जावेद अख्तर साहब की आवाज में, तो उनकी आवाज में तो जाहिर है मैंने फिल्मी गाने चल रहे हैं तो नहीं चलाया, लेकिन एक बड़ा अच्छा फिल्मी गाना चला दिया और ये आपको पसंद भी है। अच्छा भाई हमारे साहिबजादा साहब आ गए हैं और वो कहते हैं कि रशिया और अमेरिका में खवातीन लंबी होती हैं। अमेरिका हो गया जनाब, रशिया हो गया, नेदरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अभी तक जो मेरे पास जवाब आए हैं। और सलाम सुनियो सब लिसनर्स को भी सलाम, और सुनियो संजीदा जी को शो में बहुत मिस कर रहा हूं। और कह रहे हैं ओके जनाब सलीम मेमन साहब सभी मिस कर रहे हैं, हम भी बहुत मिस कर रहे हैं संजू को, संजू का पसंदीदा शो है अलग ही, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, हो सकता है वो कहीं बिजी हो लेकिन गाहे बगाहे शो जरूर सुनते होंगे। और एक उन्होंने चुटकुला भेज दिया वो हम बाद में पढ़ेंगे। भाई मैं कल वलीमे में गई हुई थी, शो नहीं सुना, 11:30 तक खाना नहीं लगा था। हाय अल्लाह जी, हमारी प्यारी सी शहजादी बहन है जरीन नूर कह रही है, मैं भी कह रहा था कि जरीन नूर हमारी बहन कहाँ गायब हो गई, याद कर रहे थे हम आपको। खैर जीती रहे मुस्कुराती रहे, अभी आप आ गई हैं तो मतलब वलीमे में खाना फोड़ कर आई हैं, दैट्स ग्रेट। और कोई भी सॉन्ग है मेहदी हसन साहब का या अहमद रुश्दी साहब का, मेरी वाइफ को और वाइफ की तरफ से संजीदा को डेडिकेट कर दीजिएगा, ये हमारे सलीम मेमन साहब कह रहे हैं। बिल्कुल कर देंगे जनाब, ये हम लिख लेते हैं कि आपकी वाइफ की जानिब से संजू को ट्रैक डेडिकेट करना है, ये लीजिए। और सलाम भाई कैसे हैं आप, एक गाना तो सुना दो। अच्छा जी नासिर खान साहब ने एक फरमाइश कर दी है, नासिर भाई हमने आपकी फरमाइश भी नोट कर ली है। नॉन नाजमाबाद से बुरफत फैमिली अगेन, अच्छा जी एक फिल्मी गाने की फरमाइश इधर से भी आ गई है। अगर ये सारे गाने नोट करने पड़ेंगे पहले मुझे, और हम गाहे बगाहे चलाते रहेंगे। जरीन बहना कह रही हैं कि बहुत छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे, हाय सब तस्वीरें बनाने में लगे हुए थे, वक्त की कदर नहीं, बस कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी तबीयत को बिल्कुल दुरुस्त कर लें आप, आवे का आवा ही मतलब बिगड़ा हुआ है, ये बात फैक्ट है। और अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो ज्यादातर शादियों में सिर्फ और सिर्फ खाना जाया नहीं करते हम, वक्त भी बहुत जाया करते हैं साथ ही साथ, और वक्त की वाकई में कदर नहीं है, खाना ही नहीं खुल रहा होता भाई, मतलब ज्यादातर तो वैसे जो टाइमिंग है वो 9-10 बजे की होती है, मगर ज्यादातर यही होता जी 11-12 बजे खाना खुल रहा होता है। खैर जनाब क्या कह सकते हैं, और बच्चों की जो बात बताई आपने ऐसा भी है, तो आप अपने आप को हलकान नहीं करें, परेशान मत हो, बस अपने आप को इंसान को दुरुस्त रखना चाहिए। और एने भाई पश्तो सॉन्ग पश्तो मूवी का सॉन्ग, भाई अपना नाम लिखोगे तभी चलेगा भाई, गाना भी बताना फिर। लाला कह रहे हैं जाने जिगर या हबीबी एस गुल को अपनी आवाज में पश्तो का कुछ सुना दीजिए। हाय अल्लाह जी, यार अय्यूब आफरीदी भाई की अगर फरमाइश हो और हम पूरी ना करें जरूर सुनाएंगे थोड़ी देर में। और यूसुफ भाई कह रहे हैं मेरी बेटी खुशी अपने ससुराल में है, उनके हस्बैंड का नाम समीर है और आज मेरी बेटी की बर्थडे है, मैं पूरी फैमिली बेटी को विश
करने ससुराल गए हैं बाद और बदकिस्मती से मैं नहीं गया क्योंकि मेरी जॉब पर हूँ। आपने जो विश किया था तो मेरी बेटी को सुनाया था, वो बेहद खुशी हुई थी। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, शायद रखे या बात रखे। वैसे मैं जो है सीरियस बताऊंगा, झूठ की बोलूं, मैं छोटी बच्ची समझ रहा था माशाल्लाह से। खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अख्तर साहब कह रहे हैं, जनाब जो हमारे नए लिसनर, पश्तो फिल्म का गाना बताइए आप, हम चला देंगे। जापा बारा, ये कौन सी मूवी का गाना है ये भी बताएं, लेकिन अगर ये नहीं तो हम वैसे ही पश्तो फिल्म का गाना चला देंगे। अच्छा भाई, हमारी सनम बहना मुल्तान वाली जो है वो कह रही है वेस्ट इंडीज की खवातीन जो है वो 6 फुट की होती हैं। मैंने सवाल एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा दराज कद औसतन दराज कद खवातीन किस मुल्क में पाई जाती हैं, ये सवाल है। तो अभी तक तो दुनिया के 7-8 ममालिक तो मेरे सामने आ चुके हैं और आगे देखते हैं और कहां कहां हम जाते हैं। लाला कह रहे हैं अच्छा सा सॉन्ग, अच्छा सॉन्ग था, अच्छा लगा भाई, अच्छी बात है, लेकिन आपकी वो फरमाइश भी हम पूरी कर देंगे। चाहत आ गई है और कह रही है भाई आपको और इस गुल को और सब सुनने वालों को सलाम, हमेशा की तरह जबरदस्त शो, आज मेरे बाबा भी सुन रहे हैं, एक प्यारा सा सॉन्ग मेरे बाबा के नाम कर दें। भाई चाहत के बाबा को हम सलाम कहेंगे, ये हमारी बहुत प्यारी बहन है और हमारी नई लिसनर है। जीती रहो, मुस्कुराती रहो, हम बहुत सारी दुआएं देते रहते हैं बाबा, चाहत के बाबा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी सुन रहे हैं चाहत के साथ, तो हम आपको ट्रैक डेडिकेट करेंगे चाहत की जानिब से। हैं जी, जी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, अब ये वाला मैसेज हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। FM 24/7 365। वेलकम बैक कहेंगे सुनियो और लेकर चलते हैं आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रैक की जानिब। और ये ट्रैक की फरमाइश की थी हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब ने, तो अलीम साहब आपका गाना एलो फड़ो।

वेलकम बैक। जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना, ऐसा गाना सुनेंगे तो चैन कहाँ है, चैन का बैंड बन जाएगा। हाँ जी, मैसेजेस आपके बेतहाशा, फरमाइशें आपकी बेतहाशा, और उन पर गौर फिक्र हो रहा है। अब साथ ही साथ चलाना भी शुरू कर दिए मैंने। और अस्सलामुअलैकुम नदीम भाई, सनम, आज के सवाल का जवाब है टर्की। सबको मेरी जानिब से सलाम और एक गाना हो जाए। वाह वाह वाह वाह भाई, हमारी सनम मुल्तान वाली, उन्होंने भी फरमाइश की, और हमारी इस बहन कराची वाली सनम ने भी फरमाइश कर दी है जी। और जनाब आगे बढ़ते हैं मैसेज की जानिब। कहाँ गया मैसेज, स्क्रॉलिंग। नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। अच्छा, ये कौन सा लिखा हुआ है आपने, प्यार भरे सलाम के बाद गाया है खान साहब का गाना सामने छोड़ने हुए क्यों। अच्छा, ये फिल्म का नाम हो सकता है, हो इरम यूसुफ का ये मैसेज है, यूनुस का, सॉरी। तो इरम यूनुस, आपका ये जो गाना है ये हमको ढूंढना पड़ेगा। लाला कह रहे हैं, युब अफरीदी लाला, जिगर अख्तर आखिर तक साथ हूं। अच्छा, पश्तो का कोई सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग जो है वो जीबीएन को डेडिकेट कर दें। बिल्कुल लाला, कर देंगे। डोंट वरी। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप, अय्यूब लाला, चाहत और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। एस गुल आ गई हैं, आपका सलाम पहुंच गया जनाब। सलाम नदीम भाई, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूं, और अल्लाह सबको खैरियत से रखे, आमीन। अच्छा, बलोची गाने की फरमाइश कर दी है बासित सुभानी साहब मलीर कैंट से। बासित भाई, बलोची गाना आज मुश्किल है, आज पाकिस्तानी मूवीज के ट्रैक चल रहे हैं, तो मूवी का अगर कोई बलोची ट्रैक हो तो मुझे बताइए, ढूंढूंगा, अगर मिल गया तो चला दूंगा। नदीम भाई, अगर हो सके तो लाला के लिए अच्छा सा सॉन्ग लगा दीजिएगा। एसगुल कह रही है, लाला ने तो आप सबको डेडिकेट कर दिया है, अभी उनकी दो डेडिकेशन और भी हैं आपके लिए भी, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और सलाम की बात कह रहे हैं मोहन लाल यूके से। नदीम भाई, नाइस सॉन्ग। मिस्र की खवातीन जो है वो लंबी होती हैं, बाकी मुल्कों से ज्यादा पाई जाती हैं। प्लीज प्ले एक ट्रैक की फरमाइश। अभी कितनी फरमाइशें हो गई भाई, जल्दी से 12 बजे, मैं तो ये कह रहा हूं। अच्छा, 12 बजे के बाद भाई आप लोगों की फरमाइश नहीं होगी, मतलब आप फरमाइश करेंगे भी तो वो पूरी हो सकेगी नहीं, इतनी फरमाइशें जमा हो गई हैं, पता नहीं ये भी पूरी हो पाती हैं या नहीं। इलियास खान कह रहे हैं कि नदीम भाई सबको सलाम, आज तो आतिफ असलम का सॉन्ग हो जाए। नहीं हो सकता मेरे शहजादे इलियास खान। नदीम भाई, आज आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। इलियास भाई, आज के शो में पाकिस्तानी मूवीज के गाने चलते हैं, पुराने, हर बहुत पुराने, तो आतिफ भाई के नए फिल्मी गाने हैं, पुराने नहीं, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज के, ये जहन में रखिए, क्योंकि आतिफ असलम ने तो इंडिया में भी बहुत सारे गाने गाए। अनीस कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज शरीफ है, तमाम लिसनर्स को प्यार भरा सलाम का। अनीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। सवाल का जवाब है, दुनिया में सबसे लंबी औरतें नेदरलैंड में पाई जाती हैं। जरीन नूर कह रही हैं, ये जरीन नूर ने और भी तफसील लिखी है, वो तफसील हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम आपको बताएंगे बाद में, बेतहाशा मैसेजेस पढ़ लिए हैं मैंने। नेक्स्ट लिंक में हमारे जितने भी मैसेंजर्स पर आते हैं मैसेज, उनके शॉर्ट शॉर्ट से मैसेज भी हम शामिल करेंगे। अभी आपको लेकर जा रहे हैं जनाब एक ट्रैक की जानिब, और इस ट्रैक की फरमाइश की थी हमारी प्यारी सी नॉर्थ नाजमाबाद से बुरफत फैमिली ने, उनकी फरमाइश एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक आएंगे सुनो आप सबको, जाएंगे एक ब्रेक की जानिब।
1: FM 100 टाइम चेक, इट्स 12 midnight.
0: जी अगेन वेलकम बैक, और जनाब अभी हम जाएंगे आपके मैसेजेस की जानिब। इरफान मेमन आ गए हमारे शहजादे भाई और कह रहे हैं स्वीट सोनियों को इस मासूम से गरीब से बच्चे का सलाम कबूल हो। सोनियों 8 अक्टूबर को बर्थडे है मेरी, आपकी बर्थडे तो नहीं मनाएंगे हम भाई, जब तक हमारे पास केक नहीं आएगा ना या मिठाई का डब्बा तब तक नहीं। इतने साल हो गए इरफान मेमन तुम्हारी बर्थडे हम मना रहे हैं, और हमारी प्यारी प्यारी सी जो मेमन कजन्स हैं वो तमाम मेरी मेमन बहनों को अगर तुमने मिठाई खिलाई और उनको ट्रीट दी तो समझो मैंने भी कर ली, सही है समझ रहे हो। तो जब उधर से मुझे ये कंफर्मेशन आएगी तो फिर हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और याद रखिएगा सुनो, और आपका न्यू लिसनर जरीन नूर शॉपर में लेकर आई हैं हमारे लिए, जरीन नूर बहन आपके लिए, शादी में गई हुई थी ना वलीमे में, वो कह रहे हैं शॉपर में हमारे लिए कुछ खाना लाई है, खाना ही लेट खुला हो बचा ही नहीं होगा मेरा ख्याल है। अब ये हमारी बहना जरीन नूर बताएंगी, अभी सुनना स्टार्ट किया है, सॉरी लेट हो गया। सजाद अली का एक सॉन्ग मेमन कजन्स के लिए, और कल सारी कजन्स आएंगी 12 बजे से पहले से रिक्वेस्ट की है, नक्को आपकी कजन्स रिक्वेस्ट करेंगी तो यानी कि उनको भरपूर तरीके से आप पार्टी करेंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे तो हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं अपनी बहनों के साथ हूं भाई, जितनी भी मेमन कजन्स हैं। खैर जी, हमारे अलीमुद्दीन साहब ने कहा है कि दराज कद खवातीन जो हैं वो भारत में होती हैं, हर लम्हा दुआगो, और सॉन्ग सुनवाने का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। चाची कहती हैं, चाची आपका आंसर नहीं बताऊंगा, आप दुरुस्त आंसर बताती हैं तो इसलिए मैं नहीं बताता हूं, समझा करें चाची। और जनाब द ग्रेट लेजेंड मोहतरम जनाब जावेद अहमद साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, इलाही आमीन। मेरे वालिद मोहतरम का अगर जिक्र कर रहे हैं आप तो उनका नाम जावेद अख्तर है। हाय, चलते चलते इसी तरह होता रहता है हमारे प्यारे से मिर्जा साहब गुज्जर खान, तो ये उनके मैसेजेस पढ़ा था। और आखिरकार हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ आ ही गई, कह रही अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, बारबेक्यू पार्टी खाने गई हुई थी, अये अये अये, कल्ले कल्ले, अब आपका शो एंजॉय करूंगी, ढेरों दुआएं आपके लिए, और मेरा फेवरेट शो है आज का, वाह जी वाह। मेरी रूह जहां को बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग डेडिकेट कीजिएगा अहमद रुश्ती साहब का, आप गाना बताइए ना, अब मैं पता नहीं कोई थका सा गाना अहमद रुश्ती साहब का ज्यादा मशहूर गाना ना चला दूं और वो आपकी रूह जहां को पसंद ना है तो हम पे इल्जाम तो वैसे भी है, ऐसे ही सही, तो आप खुद बताएं मुझे कौन सा गाना चलाएं। और आज का सवाल क्या है ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। पंजाब में शादी की टाइमिंग के मामले में खासी पाबंदी नजर आती है, अमूमन शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक की मुकर्ररा हद का सख्ती से ख्याल रखा जाता है, इसके बरक्स कराची और सिंध में वक्त की ऐसी सख्त पाबंदी कम नजर आती है जहां शादी की तकरीब अक्सर रात गए तक जारी रहती है। और सवाल सुन लिया मेरा ख्याल, दुनिया में औसतन सबसे ज्यादा कद वाली खवातीन, इन्होंने भी नेदरलैंड बताया, में पाई जाती है, इसके बाद अमूमन ओहो सही बताया भाई, सही बताया, बहुत सारे मुल्कों के नाम बताए इन्होंने। अच्छा हमारी चाची और नौरीन बहना ना ज्यादातर इनके जवाब दुरुस्त होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, और ये आ गई हैं जनाब हमारी प्यारी सी और भाईजान द ग्रेट द वन एंड ओनली FM 100 की शान आन बान अजमल शोभी साहब आ गए हैं। शोभी भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हमारी प्यारी सी बहना फरीदा बुरहानुद्दीन का मैसेज था, वो उन्होंने आंसर दिया है नेदरलैंड उन्होंने भी। और भाई हमारा गला खाशक हो गया, अब आपको गाना ही सुना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और अभी हम जा रहे हैं जनाब हमारी प्यारी सी बहना सनम, कौन सी कराची वाली, उनकी फरमाइश पर गाना चल रहा है ये। और मुल्तान वाली सनम का भी चल जाएगा, डोंट वरी एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे दो साथी जीवन के। अच्छा भाई, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो ये बता दूं, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एनएस जोड़े हो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक ये अल्लाह गुला जारी हो सारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाल किए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि आप लोगों ने ये बताना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दराज कद खवातीन कौन से मुल्क में पाई जाती हैं, औसतन आपने बताना है। और इलियास खान साहब क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, ये तो इलियास भाई का तो मैसेज हो गया था, मैं तो आप लोगों के फरमाइशों की तलाश में था। हाँ, अलबत्ता हमारी प्यारी सी बहन इरम यूनस का गाना जो है वो ढूंढने में नहीं मिल रहा। ये गाना मेहंदी हसन और नाहिद अख्तर की आवाज में है, आपका गाना भी रहता है, वो ढूंढ रहा हूँ। बल्कि मैंने ये क्यों नहीं ढूंढा, इरम का मैंने नाम नहीं लिखा होगा ना। हाँ, और इरम यूनस का हमने नाम लिख लिया है और अब हम अगले लिंक में ढूंढेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। नासिर खान साहब कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया भाई मैसेज शामिल करने का, भाई मेरी तरफ से ये मैसेज सबको दे दो, आजकल के बच्चे चोरी हो रहे हैं, आजकल बच्चे चोरी हो रहे हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। नासिर खान साहब बहुत प्यारा सा मैसेज दिया आपने, इस पर हम चर्चा करेंगे कुछ देर में, पहले मैसेजेस जरा हो जाएं। अच्छा जी, अख्तर भाई कहते हैं कि इन्हें भाई नाइस शो है, मैं आपका शो रमजान से सुन रहा हूँ। क्या बात है अख्तर साहब, को फिल्मी गाने की फरमाइश कर दें, अगर नहीं करेंगे तो भी हम आपको डेडिकेट जरूर करेंगे। जिंदगी साथ है, हाय अल्लाह जी, जिंदगी कहाँ थी तुम, हमारी तो जिंदगी खो गई थी। कैसे मिजाज है, बेस्ट शो सुन रही हूँ, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, एवन शो है, जीती रहो मुस्कुराती रहो, बस जिंदगी साथ रहो। नदीम भाई, सेकेंड ऑप्शन इज फिनलैंड इज अ कंट्री वेयर टॉलेस्ट वुमेन्स आर फाउंड। ये हमारे फ्रूट बेचने वाले ही कहा था ना हमने, या सब्जी बेचने वाले कहा था, साहिबजादा साहब। एंड जिंदगी कहती है बेस्ट एवन शो, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, आप रिक्वेस्ट ना करें हम आपको डेडिकेट कर देंगे, यानी कि समझ रही है ना। जरीन नूर बहना कहती है संजू याद आ रही है, हाय अल्लाह जी, संजू ने तुम्हारे पैसे तो नहीं देने से सब बताना। मजाहतन का है, बुरा कोई ना बनाए। अय्यूब लाला कहते हैं जिगर कदावर खवातीन मुल्क पाकिस्तान। मोहल्ला जीबीएन में पाई जाती हैं। आज मूड अच्छा लग रहा है आपका। यादाश्त वापस आ रही है अय्यूब आफरीदी की। सबसे लंबे कद वाली खवातीन जो है अफ्रीका में पाई जाती हैं, ये सलीम मेमन साहब कह रहे हैं। मुजम्मिल साहब आ गए हैं बहुत दिनों के बाद। मुजम्मिल भाई, आपका मैसेज हमारी आंखों के सामने आया है, कैसे हैं आप? कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, सवाल का जवाब, आयरलैंड बेहतरीन वुमेन्स वही होती हैं जो अपने मुल्क के हर एक का फर्द को मुल्क का हिस्सा जानते हैं। मुजम्मिल भाई, मेरे सर से गुजर गया, कुछ कुछ समझ में आया। खैर, आपने आयरलैंड जवाब दिया, इतना ही बहुत। और सलाम की बात कर रहे हैं सर, कराची अवारी टावर्ड से आमिर सोहेल निजामानी एंड दानियाल संद, और कहते हैं कि सर शो इज वेरी बेस्ट, सर आपके सवाल का जवाब है मिस्री मिस्र, और सर सिंधी जलाल चांडियो का सही कोई गाना हो जाए तो क्या बात है। तो पहली बात तो ये कि अवारी टावर में आप क्या कर रहे हैं? इत्तेफाक ऐसा है कि मैं कल गया था अवारी टावर, गया था वहां, मुझे आप क्यों नजर नहीं आए? तो सही आज जो है मेरे ये प्यारे प्यारे से दोनों आमिर सोहेल साहब और दानियाल साहब, लगता है फर्स्ट टाइम मैसेज किया,
और आपको वेलकम कहेंगे और वेलकम के साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के शो में हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो गाने पॉप गाने जो है वो नहीं चलते. उसकी वजह ये है कि आज के शो में स्पेसिफिक पाकिस्तानी मूवीज के पुराने और बहुत पुराने ट्रैक्स चलते हैं. अगर मूवी का ट्रैक सिंधी मूवी का ट्रैक होगा वो चला देंगे. पख्तो मूवी का ट्रैक होगा तो वो भी चला देंगे. यार पख्तो मूवी से याद आया बहुत सारी फरमाइशें आई हैं. तो हम अभी एक पख्तो मूवी के गाने की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक जो है ये हम अयूब आफरीदी की जानिब GBN को डेडिकेट करते हैं और अख्तर भाई जो है ना उनको भी हम डेडिकेट करते हैं. एलो पढ़ो.

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो पाकिस्तानी मूवी पश्तो मूवीज का भंगड़े दखवी शोर। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया होगा, लेकिन इस तरह से होता है इस तरह के कामों में। बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। अनिला अली कह रही है, हाय सलाम भाई, मैं आपका शो पहली बार सुन रही हूँ, नाइस शो। अनिला आपको खुश आमदीद कहेंगे। एक सॉन्ग की फरमाइश की है सर, आंखों पर जनाब आपकी फरमाइश। और प्लीज प्लीज प्लीज अनिला सुनती रहो, गाना चल जाएगा। जरीन बहना कह रही है कि कोई भी सॉन्ग संजू के नाम। जरीन इतनी देर से क्यों बोला पहले मुझे ये बताओ, इतनी माशाल्लाह से शुरू से सुन रही हैं आप। और मैंने जबकि ये बात कही थी, आपने भी सुनी थी कि 12 बजे के बाद फरमाइशें नहीं होंगा, तो आपकी फरमाइश भी सर आंखों पर हम चलाएंगे। और लेकिन वक्त मिला तो, क्योंकि अब आपकी फरमाइश का नंबर जो है ना वो बहुत बाद में लगा है, तो जिन जिन की फरमाइशें मतलब जाहिर है पहले नंबर पर हैं उसी हिसाब से चला रहा होता हूं मैं। मैं प्यार का ठेला लगाता हूं। हाय अल्लाह जी, ये ठेला तो हर एक को लगाना चाहिए साहिबजादा साहब। सलाम की बात कह रहे हैं कि कैसे हैं इश्फाक, आमिर, सोहेल, दानियाल फ्रॉम कराच। मेरा पहला मैसेज है आपको, कोई पंजाबी वाला गाना चला दो जनाब, पंजाबी मूवी का चला देंगे भाई इश्फाक साहब। और ये मेरा ख्याल है इश्फाक इजाफा हुआ है, ये अवारी टावर वाले ही हैं, आमिर सोहेल और दानियाल, और साथ में इश्फाक भी आ गए। भाई आप लोगों को बता रहा हूँ, पंजाबी गाना जरूर चलेगा, क्योंकि एक पंजाबी गाना पहले से ही लाइन अप हो चुका है, तो उसमें आपका नाम भी शामिल कर देंगे। यानी कि समझ रहे हैं ना आप।

मुजम्मिल साहब कहते हैं नदीम भाई मैंने कुछ यूं लिखा था, बेहतरीन कौमें यानी कि नेशंस वही होती हैं जो अपने मुल्क की हर एक फर्द को मुल्क का हिस्सा यानी कि असेस्ड जानती हैं। मुजम्मिल साहब आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने लिखा और मेरी समझ में भी आया, पहले तो सर से गुजर गया था कि बेहतरीन कौमों की बात कर रहे हैं ना आप, तो कौम हो तो बेहतरीन हो ना, हम तो कौम है ही नहीं, हम तो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अख्तर भाई ने कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त सा सॉन्ग था, आपने तो थैंक यू कर दिया, अयूब आफरीदी साहब ने किया ही नहीं, हालांकि जीबीएन को डेडिकेट किया था। सुनियो आपके छोटे भाई नवीद के अभी कॉल आई थी, आपको सलाम कह रहे हैं और एक क्या लिखा हुआ सलीम भाई, एक का बोला हमने हम ना तीसरे कभी फिर खुशी के लिए बच्चों की आवाज में भी है वो वाला चलाएगा सलीम मेमन, क्या लिखा है तुमने मेरे सर से गुजर गया। डेढ़ से एसएमएस मिला मैंने कब से किया हुआ था, मेरे पास जो है आपका एसएमएस आया 12:16 पर, हमारे पास टाइम भी आ रहा होता है, मैंने जैसे कहा ना मेरी बहना लिख लिया है लाइन से, बस अभी तो फौरन से पेशतर आप लोगों के मैसेजेस का सिर्फ नाम पढ़ूंगा और उसके बाद जो है आप लोगों की फरमाइशें चला दूंगा ताकि आप लोगों के गाने भी हो जाएं। और इरफान मेमन क्या कहते हैं, सुनियो आप भूल जाइए मिठाई ये कजन नहीं, हाँ भूल जाएंगे जाएंगे मिठाई या कजन्स नहीं, सुनियो मेरी कजन्स को अपनी बर्थडे याद नहीं होगी मगर मेरे बर्थडे जरूर याद होती है क्योंकि मुफ्ता जो होता है ये हुई ना बात। सॉन्ग प्ले देखते हैं भाईजन, पक्का पक्का वादा नहीं है। और फरीदा बुरहानुद्दीन कह रही है ब्राजील में दरास कद खवातीन होती है। नौदीन तौसीफ बहना कह रही है कुछ कोई यूं भी रूठता है माना मेरी खता है मगर अब माफ कर दो, ये गाने के बोले ढूंढना पड़ेगा अभी मेरी बहना। मिर्जा साहब कहने पे ने सॉरी नदीम भाई मेरा मोबाइल की सर्विस बंद हो गई थी अब आ गई है इस तरह भी होता है। अच्छा जनाब अभी हम जाएंगे एक और फरमाइश की जानेब और ये फरमाइश है हमारे नासिर खान साहब की, उन्होंने कहा था कि बेवफा कौन है,

0: बेवफा कौन है कौन हर जाय है,
1: फैसला आज में ही फिल्म में हो जाएगा।
0: भाई इसके साथ ही हम एक और ट्रैक की जानिब जा रहे हैं और इस ट्रैक की भी फरमाइश आई थी। ये फरमाइश की थी मोहनलाल ने।

ये वादियां ये पर्वतों की शहजादियां ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आया होगा और हमारे मोहनलाल की फरमाइश भी पूरी हो गई है। इसी बात पर हम आपको एक और फरमाइश की जानिब लेके जाएंगे जनाब और इसकी रिक्वेस्ट की थी कौन सा गाना है भाई। हाँ भाई एक तो हमारे नए लिसनर हैं इश्फाक साहब हैं आमिर हैं दानियाल हैं इन्होंने पंजाबी ट्रैक की फरमाइश की थी और उसके साथ ही साथ नादिया भी सुन रही हैं उनको भी डेडिकेट करेंगे। नादिया ने भी पंजाबी गाने की फरमाइश की थी एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे आया मौसम तेरे मेरे प्यार दा ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप मुझे बड़ा पसंद है वैसे यार यहाँ ट्रैक है यार। और आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानेब और कहाँ गया मैसेज मैं प्याज का ठेला लगाता हूँ साहिबजादा कह रहे हैं प्याज कैसे किलो चल रहे हैं साहिबजादा साहब जरा ये तो बताइए सलाम की बात कह रहे हैं कैसे हैं इशफाक आमिर अच्छा आपका तो हो गया मैसेज और जनाब सलीम इमन भाई आज चुटकुले नहीं चलेंगे आप लोगों के भरपूर तरीके से मैसेजेस होते हैं वक्त होगा तो जरूर सुनाऊंगा और नदीम भाई अंटार्कटिका की लड़कियां लंबी होती हैं मैंने खुद देखा है वासिफ सुभानी साहब क्या बात है आप अजीम हैं बल्कि अजीम तर हैं आप वासिफ सुभानी साहब का भी मेरे ख्याल नए लिसनर है हमारे लेकिन बहुत खूब वहां जमी हुई लड़कियां देखी होंगी अच्छा जी मुझसे शादी का खाना नहीं खाया जाता मैं घर से खाना खा कर जाती हूँ शॉपर तो दूर की बात है आप सही कह रही हैं शॉपर साथ लेके जाया करें आपसे शादी का खाना नहीं खाया जाता आप घर खाना खा कर जाती हैं तो जब शादी पे जाया करें तो शॉपर में खाना डाल लिया करें और फिर उसको घर ले आया करें जब उसको घर लाएंगी तो वो घर का खाना बन जाएगा फिर आप खा लेंगी मजाक कर रहा हूँ अयूब लाला कह रहे हैं थैंक यू पश्तो सॉन्ग चलाने का शुक्रिया जिगर सलामत रहें और हम ना तरसे कभी दिल खुशी के लिए प्यार मिल जाए गर जिंदगी के लिए समझ गया जनाब बड़ी जल्दी बताया आपने सलीम अहमद भाई लतीफे लिखते रहते हो ऐसी चीजें भी लिख दिया करो हमारे नवेद भाई छोटे भाई सुन रहे हैं भाई वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहीन शहजादी भी आ गई हैं कह रही है हबीबी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके सुने हो तमाम सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम और कह रही है मुझे भी सॉन्ग डेडिकेट करें मेरी प्यारी सी बहन बिल्कुल करेंगे डेडिकेट डोंट वरी पहले ये फरमाइशें तो पूरी होने दो और जनाब जनाब जनाब अस्सलाम वालेकुम का मैसेज आया बस और कुछ नहीं आया यानी कि समझ रहे हैं ना आप वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और अब फौरन से पेशतर आपकी और फरमाइशों की जानिब चलते हैं अनीला अली हमें फर्स्ट टाइम सुन रही थी और अनीला ने फरमाइश की थी अनीला तुम्हारी फरमाइश एलो पढ़ो

सामने बैठ के दिल को चुराते क्यों हो ब्यूटीफुल ट्रैक। और अब जाएंगे जनाब ये ट्रैक हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ की जानिब से, उनकी रूह जान को।

वेलकम बैक कहेंगे, आए कोई यूं भी रूठता है। क्या बात है नौरीन, मैं ना बहुत अरसे के बाद मैंने गाना सुना है, अच्छा लगा। ओके ठीक, और अब जनाब हम जाएंगे अनीला अली जो कि हमारी नई लिसनर है, उन्होंने भी एक फरमाइश की थी, उनकी फरमाइश हेलो फड़ो।

ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। ये हमारी प्यारी सी बहन सनम मुल्तान वाली, उनकी फरमाइश।

0: कल भी तुमसे प्यार था मुझको, आज भी तुमसे प्यार भी है। अच्छा जनाब, अब बढ़ते हैं आपके सवाल के जवाब की जानिब। साथ साथ हल्का फुल्का गाना चल रहा है।
1: अपने दिल
0: सवाल जो मैंने आपसे किया था कि दुनिया में औसतन सबसे ज्यादा कदावर खवातीन कौन से मुल्क में होती हैं, तो आप लोगों के जो जवाब आए हैं वो तकरीबन दुरुस्त है। नेदरलैंड जो आप लोगों ने जवाब दिया ना, जिन जिन लोगों ने, उसको मैं दुरुस्त मान लेता हूँ। बाकी जितने भी मुल्कों के नाम लिए ना, किसी ने अफ्रीका कहा, किसी ने अमेरिका कहा, किसी ने ऑस्ट्रेलिया कहा, किसी ने तुर्की कहा, बहुत सारे मुल्कों के नाम लिए, तो इसमें जो अदाद शुमार आता है मुल्कों का, उसमें नेदरलैंड का नाम 100% आता है। दुनिया के जो 10 मुमालिक हैं इस हवाले से, उनमें नेदरलैंड का नाम भी सरफहरिस्त है। और जो असल में जिस मुल्क में ज्यादा औसतन कदावर खवातीन का शुमार जिसमें किया जाता है, उस मुल्क का जो नाम है उसका नाम है लॉटविया। लॉटविया, लॉटविया एक कंट्री है जिसमें औसतन जो है ख्वातीन की जो हाइट है वो 5.7 फीट है, और 5'8" और 5'9" की भी बनी, लेकिन औसतन औसतन ज्यादातर आपको ख्वातीन 5'7" की नजर आएंगी। और 5'7" की ख्वातीन का जो कद है वो बहुत होता है भाई, क्योंकि 3-4 इंच की तो हील पहनती है, जाने की समझ रहे हैं ना आप। तो ये सवाल का जवाब था, और इसमें मैं नेदरलैंड को भी शुमार करूंगा। नेदरलैंड दुनिया के मेरे ख्याल दूसरे या तीसरे मुल्क में आता है। टॉप 5 कंट्रीज जो हैं ये उन्हीं के नाम हैं, जिनमें डेनमार्क भी है, नेदरलैंड भी है, आयरलैंड भी है, और लॉटविया जो है ये वो कंट्री है जनाब। ये सवाल का जवाब था। और आखिर में अब आपसे इजाजत भी चाहनी है, वक्त फुर्र करके उड़ गया है। मैसेजेस भी आपके मैं शायद आज पूरे सही तरह नहीं पढ़ सका, ये आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है ये भरपूर तरीके से। और आज की आज के शो में मेरी कोशिश ये होती है, मैं ये नहीं देखता हूँ कि रिदम क्या जा रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ज्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों की जो फरमाइशें हैं वो पूरी हो जाए। उसकी उसका रीजन ये है कि पाकिस्तानी मूवीज के ट्रैक्स बहुत कम सुनने में आते हैं, पुराने। तो जाहिर है आज का शो जो है वो आप लोगों के लिए वक्फ किया हुआ है, तो इसमें आप लोगों की फरमाइश जो है वो सर आंखों पर होती है। लेकिन कोशिश किया करें कि एक घंटे के अंदर अंदर प्रोग्राम के आगाज से लेकर और एक घंटे का जो वक्त होता है उसमें अगर आप फरमाइशें बस कर दें, उसके बाद भी आपकी फरमाइशें आ रही होती हैं तो वो फिर पूरी नहीं हो पाती और गाने भी पूरे पूरे नहीं चल पाते। खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और भी बहुत प्यारी प्यारी सी कुछ बातें थी जिन पर चर्चा करनी थी, मगर वक्त की तंगी की बाइज जो है आज कुछ चर्चा वर्चा भी ज्यादा नहीं हो सकी। और अनिला अली कह रही हैं, थैंक यू सो मच भाई, जीती रहो मेरी प्यारी सी बहन। और उन्होंने गाना सुना ना, जब कोई प्यार से बुलाएगा, गाना ही बड़ा जबरदस्त है,
2: तुमको एक शख्स याद आएगा।
0: अब इंशाल्लाह ताला जनाब मुलाकात तो आपसे होगी कल स्लीपलेस नाइट में, मगर अभी एक फरमाइश, डेडिकेशन यू कैन से, के रहती है हमारी प्यारी सी चाची की जानिब से और मेरी जानिब से। अजरा शब्बीर को हम ये अपना लास्ट वाला गाना डेडिकेट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना और उम्मीद करता हूँ अजरा शब्बीर को भी अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ फरीन शहजादी भी आई थी, उन्होंने भी कहा था कि मुझे भाई कोई गाना डेडिकेट कर दीजिएगा, तो फरीन आपके लिए भी है लेकिन स्पेशली अजरा शब्बीर जी आपके लिए। और मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।

रेत पर हम सलाम लिखते थे, वो दरख्तों पे नाम लिखते थे। अच्छा, ये दौर भी वाकई बड़ा खूबसूरत दौर होता है, जब यूनिवर्सिटीज में का दौर होता है, कॉलेज का दौर होता है, कि दरख्तों पे नाम खुरीद के लिख देना कि ये एक यादगार रहेगी, क्लासरूम किसी कोने खांचे दीवार पे नाम लिख देना,

तेज हवा और पागल लहरें। आवाज शायद आलम की थी और वक्त एक 55 हो चुके हैं, 1:55। और जनाब इस वक्त शुजा मिर्जा कहते हैं, उस्ताद जी आज हो जाए तेरे हाथों का कंगन। और उसके बाद फिर अलीमुद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब ने ज्वाइन किए, वाजिब एहतराम नजमुल खान शोभी भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और हम तो कहते तेरे इश्क में हमने खुद को खो दिया, हर लम्हा तेरा नाम ही लिया, क्या बात है। जबरदस्त जी, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल चले जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं अभी आपको सुनाता हूँ, मैं एक अभी एक खूबसूरत कलाम है जो मैं शामिल कर रहा हूं। मैं ये बिस्मिल साबरी साहब का कलाम है, बड़ा खूबसूरत ख्याल है इनका, बहुत खूबसूरत लफ्जों को पिरोया है इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ। कहते हैं कि सहर हुई तो ख्यालों ने मुझको घेर लिया, सहर हुई तो ख्यालों ने मुझको घेर लिया, जब आई शब तेरे ख्वाबों ने मुझको घेर लिया। सहर हुई तो ख्यालों ने मुझको घेर लिया, और जब आई शब तेरे ख्यालों ने मुझको घेर लिया। मेरे लबों पे अभी नाम था बहारों का, मेरे लबों पे अभी नाम था बहारों का, हजूम शौक में खारों ने मुझको घेर लिया, हजूम शौक में खारों ने मुझको घेर लिया। कभी जनू के जमाने कभी फराक रूते, कभी जनू के जमाने कभी फराक रूते, कहां कहां तेरी यादों ने मुझको घेर लिया, कहां कहां तेरी यादों ने मुझको घेर लिया। निकल के आ तो गया गहरे पानियों से मगर, निकल के आ तो गया गहरे पानियों से मगर, कई तरह के शराबों ने मुझको घेर लिया, कई तरह के शराबों ने मुझको घेर लिया। ये जी में था कि निकल जाऊं तुझसे दूर कहीं, ये जी में था कि निकल जाऊं तुझसे दूर कहीं, तेरे ध्यान की कि तेरे ध्यान की बाहों ने मुझको घेर लिया, कि तेरे ध्यान की बाहों ने मुझको घेर लिया। जब आया ईद का दिन घर में बेबसी की तरह, जब आया ईद का दिन घर में बेबसी की तरह, तो मेरे फूल से बच्चों ने मुझको घेर लिया। हजूम रंज से कैसे निकल सके बिस्मिल, हजूम रंज से कैसे निकल सके बिस्मिल, तेरी तलाश के रिश्तों ने मुझको घेर लिया, तेरी तलाश के रिश्तों ने मुझको घेर लिया। सहर हुई तो ख्यालों ने मुझको घेर लिया, और जब शब हुई आई शब तो तेरे ख्यालों ने मुझको घेर लिया। मेरे लबों पे अभी नाम था बहारों का, मेरे लबों पे अभी नाम था बहारों का, हजूम शौक में, हजूम शौक में खारों ने मुझको घेर लिया।

और जनाब दिल के सच्चे लोग अक्सर आजमाए जाते हैं, दिल के सच्चे लोग अक्सर आजमाए जाते हैं, भलाई के सिले में जख्म खाए जाते हैं, भलाई के सिले में जख्म खाए जाते हैं। जो मुखलिस हैं उन्हें बेवकूफ कहते हैं लोग, जो मुखलिस हैं उन्हें बेवकूफ कहते हैं लोग, मतलब परस्त यहां अकलमंद कहलाए जाते हैं। जो मुखलिस हैं उन्हें बेवकूफ कहते हैं लोग, मतलब परस्त यहां अकलमंद कहलाए जाते हैं। हमेशा होता है खुद को बांटने वालों का अंजाम यही, हमेशा होता है खुद को बांटने वालों का अंजाम यही, पहले पहल वही लोग राह से हटाए जाते हैं, पहले पहले वही लोग राह से हटाए जाते हैं, दिलों में जिनकी वफाओं के चराग

जलते हैं, दिलों में जिनकी वफाओं के चिराग जलते हैं, वो जमाने की महफिलों में सताए जाते हैं, वो जमाने की महफिलों में सताए जाते हैं।

इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, अरे इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, खुदा जाने किसको नजर ढूंढती है, इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, खुदा जाने किसको नजर ढूंढती है, न दर ढूंढती है न घर।